101.9 FM बैंड और न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, दिनांक 6 जून

2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है इस मंगल धुन के साथ।

0: 101.9 FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण

0: कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, जिसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। 101.9 FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आप आनंद लीजिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का।
2: इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यम नैव चिंतयेत, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अर्थात बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो वर्तमान काल के अनुसार कार्य करते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 211। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनिएगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर, भाग सुनिएगा आज छठा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के।

सुबह 8:15 से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनेगा सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत सुनिएगा लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से मैटनी शो। दिन में 12 हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। दोपहर 1 सुरीला सफर और दोपहर 2 त्रिवेणी। सदाबहार नगमे, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से।

दोपहर 3 बजे से आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। नाट्य तरंग सुनिएगा दोपहर 3:30 से। नाटक पोस्टमैन का पहला भाग के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद P.S. कृष्णस्वामी, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे पिटारा के अंदर बॉम्बे टॉकी सुनिएगा। इसके अंदर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग सुनवाएंगे आपको। छाया गीत का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से। झरोखा शाम 6:30 से। 6:35

30 मिनट से संध्या रंजन विशेष जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं समाज सेविका साहित्यकार सुधा मूर्ति, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा जिज्ञासा। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटक गुलाब की पंखुड़िया भाग 1, लेखन सुरेंद्र कांत का, निर्देशन मुमताज शकीब। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से। छायागीत सुनेगा रात 10 बजे से आलेख एवं स्वर जयप्रकाश मीणा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और ढलती जाए रात 10:30 से।

15 मिनट से आपके लिए रात 9 बजे से, छायागी सुनेगा रात 10 बजे से, आलेख एवं स्वर जयप्रकाश मीणा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी और ढलती जाए रात 10:30 से।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की छठी कड़ी आज हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, ख्याल गायन में तबले पर जो संगति की जाती है और जो तालों का उपयोग होता है, खासतौर से तीन ताल और एक ताल,
2: हाँ जी,
1: तो शुरुआती दौर में संगीतकारों की ये ताल बड़े पसंदीदा रहे हैं।
2: जी हाँ,
1: इसके बारे में आप कहेंगे।
2: हाँ, जैसे मैंने कहा कि शास्त्रीय संगीत में जो संगत के लिए जो ताल चुने गए हैं,
1: जी,
2: जैसे ख्याल गायन में तीन ताल में ख्याल होते हैं, एक ताल में ख्याल होते हैं,
1: जी जी,
2: कुछ झपताल के भी ख्याल है, तो ये ताल जो है, इन तालों का प्रयोग फिल्मी गीतों में भी हुआ है। तो ये जो ताल है, ये ताल जैसे अभी ख्याल की संगत के लिए एक ताल हम लोग जो बजाते हैं,
1: जी,
2: तो एक ताल में जो है उसमें विलंबित एक ताल,
1: जी,
2: तो विलंबित का मतलब ये है कि दो मात्रा के बीच वाला फासला बड़ा किया है, उसको और भी बड़ा किया तो वो अति विलंबित हुआ, दो मात्रा के बीच वाला फासला कम होता गया तो वो मध्यलय, और भी कम हुआ तो वो द्रुतलय। ये जो है, ये फासला मतलब एक गणित है और उसी गणित के तौर पर वो ठेका उसका बनता है। अभी एक ताल का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, तो एक ताल तो है धिन धिन धगे त्रक तूना कत्ता धगे त्रक धीना धिन धिन। अब ये ख्याल में विलंबित इसको बजाते हैं, तो मैं अति विलंबित में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विलंबित किस तरह से बजा?

0: जो है दिन दिन ये इतना जो अवग्रह है दो मात्रा के बीच में
1: जी,
0: तो उससे वो ताल विलंबित हुआ। विलंबित होने का फायदा ये है कि ख्याल गायन में गायक जो है उसको बड़ा फासला मिल गया गाने के लिए
1: जी,
0: तो अपनी प्रस्तुति वो बड़े आराम से फिर दे सकता है। अगर इसमें जो है ना सम और काल

0: का ये चक्र है, ताल मतलब तो सम काल का चक्र है
1: जी जी।
0: तो सम की तो अपनी अपनी अहमियत है, सम पर आने के लिए ही सारी जो प्रस्तुति होती है वो उसके लिए ही तड़पती रहती है, ये मुझे सम पर आना है
1: जी जी।
0: तो सम पर अगर आना है तो उसके लिए हमें गाने के लिए फासला मिल गया और उसके बाद में हम सम पे आए, तो श्रोताओं को तभी आनंद मिलता है जब वो सम पे सब लोग आकर मिलते हैं एक साथ। तो ये जो है ये एक ताल वाला गणित है, तो ऐसे ही सारे ताल है, जप ताल है, रूपक है, तीन ताल है, इसमें विलंबित में ख्याल गायन होता है और मध्यलय में जो है उसमें फिर छोटे ख्याल होते हैं और मध्यलय में ही हमारे फिल्मी गीत जो है वो उसमें उनका आविष्कार हुआ है। तो ये मतलब अलग इसलिए है क्योंकि 12 मात्रा के ताल में गीत को ढालना और उसकी खूबसूरती रखना
1: जी,
0: तो ये एक तरह से चैलेंज होता है और वो चैलेंज जो है वो संगीतकारों की उनकी प्रतिभा है कि उन्होंने उसको बाखूबी लोगों में प्रस्तुत किया है
1: जी। तो एक ताल की खूबसूरती जिस गीत में देखने को मिलती है
0: जी,
1: वो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है?
0: केतर की गुलाब जुही
1: चंपक बन झूले, बसंत बहार फिल्म का गाना है,
0: भीमसेन जोशी जी पंडित जी उनकी,
1: और मन्ना दा का स्वर भी इस गीत में है और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे।

0: डे के स्वरों में संगीतकार शंकर जयकिशन। रविंद्र जी, प्रतिभाशाली संगीतकारों ने जैसे एक ताल का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है फिल्मी गीतों में,
1: जी
0: उसी प्रकार झपताल का भी प्रयोग हुआ है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: आपकी राय क्या है?
1: दस मात्रा का झपताल जो है
0: जी,
1: मतलब दस मात्रा में किसी गीत को ढालना, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि ताल जो है उसमें सम है काल है
0: जी,
1: मतलब झपताल जो है धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी
0: जी।
1: अभी ये जो है ये इतना बड़ा आवर्तन है दस मात्रा का, उसमें पहले धी पर सम है
0: जी,
1: फिर काल है, उसके बाद में फिर सम है। तो ये जो सम काल का गणित होता है इसको रखते हुए वो गीत बनाना, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो मशहूर गीत।
0: हाँ।
1: इसलिए भी इस चीज को मानते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न हमारा ये संगीतकारों का दौर रहा है फिल्मों
0: जी,
1: में
0: जी, जी,
1: कि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत बनाए, और जो भी बने हैं सब लाजवाब है।
0: बेशक। झपताल में निबद्ध कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए?
1: वैसे तो कई सारे गीत है
0: जी।
1: आवाज देके हमें तुम बुलाओ,
0: प्रोफेसर फिल्म का गीत है
1: जी,
0: जो राग शिवरंजनी में आधारित है
1: जी।
0: तो श्रोताओं सुनते हैं शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

0: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का जन्मदिवस है, इसलिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और चित्रगुप्त के संगीतबद्ध किए गाने के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम भाभी

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली बेलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आजाद फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम को 101.9 FM बैंड पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत का।

कलश 8:15 पर से आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुर संगम। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा गोपीनाथ बारदोलोई जयंती। इसके साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटिका घर की गंगा, जिसे लिखा है कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने और निर्देशित किया है प्रकाश सक्सेना ने। साथ ही कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ आप जानेंगे आज के स्थानीय समाचार। सुना सुबह 9 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें आसपास की। सुबह 10 से 11:55 तक आप आनंद लेंगे वीर भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। 11:55 से 12:30 तक आप सुनेंगे एक विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल का 5वां एपिसोड।

दोपहर 12:30 पे आप सुनेंगे अवधि लोक गीतों से सजा कार्यक्रम लोक रंग। दोपहर 1 से आप सुनेंगे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे फेसबुक फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर 2 से आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीतांजलि। दोपहर 2:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें आज सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली में चर्चा का विषय होगा ईंधन बचाने के क्या क्या विकल्प अपनाती हैं आप। दोपहर 3 से 4:59 तक आप आनंद लेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का। शाम 5 से आप एक बार फिर से जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा योग और एकाग्रता। इस साथ ही कार्यक्रम के सेगमेंट हमारी धरोहर में आप सुन जानेंगे महाबलीपुरम स्मारक समूह के बारे में। इस सारी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर कुछ युवा साथियों से की गई जीनत की बातचीत। कार्यक्रम के सेगमेंट आर्थिक जगत में आप चर्चा का विषय होगा एनपीए। इसके साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलिकेट अयोध्या में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह पर एक रेडियो रिपोर्ट। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। शाम 6:30 से आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा मोटे अनाजों की खेती। साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर श्याम वीर सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा धान की उन्नत प्रजातियां एवं नर्सरी डालने की वैज्ञानिक विधि। आपसे बातचीत की है प्रभाकर शुक्ला ने। इसके साथ ही कार्यक्रम में आप जानेंगे बाजार भाव और मौसम का हाल। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार से, जिसमें आज आप जानेंगे हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त के बारे में। रात के 9:15 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल। रात के 9:30 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि समाचारों

0: का प्रसारण भी समय समय पर किया जाता रहेगा। 101.9 एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:20 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाभियान 2026 की शुरुआत करते हुए इसके लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
4: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। 4th संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
3: इस अवसर पर श्रावस्ती स्थित गुलरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
4: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड।

0: के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है, बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है, व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
0: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है, बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है, व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि यह उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने सुरहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी मंथन हुआ।
2: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की, स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की, कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए, उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी 21 जून तक सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक पेड़ माँ के नाम, यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट

कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किए गए। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जनपदों में तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी जनपदों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमने आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। और अब कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। दिनांक 8 जून 2026 को दिन सोमवार, समय 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा। इससे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376804090। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7376804090। समय याद रखें, दिनांक 8 जून 2026 को शाम 5:30 पर। सूचना समाप्त हुई। 101.9 FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 7:33 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत कार्यक्रम अमृत कलश।
4: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी

0: डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
1: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए।

का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाज में इस सुंदर से भजन के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से और कार्यक्रम का अगला भजन सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
4: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
3: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
4: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
3: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
4: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
3: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
4: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
5: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम अमृत कलश। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7%

0: 7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
1: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने

0: कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात, जिसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुर संगम।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: सुनैन आई हॉस्पिटल नियामा फैजाबाद अयोध्या द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू सुनना ना भूलें, कल रविवार रात 8:15 से।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: कार्यक्रम सुर संगम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पेशकश आशा भोसले और गुलाम अली की आवाज में।

और कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं जगी सिंह, आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
5: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतहर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपीनाथ बारदोलोई की जयंती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और असम के इतिहास में गोपीनाथ बारदोलोई जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। 6 जून 1890 को असम के राहा में जन्मे गोपीनाथ बारदोलोई एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और जननेता थे। उनकी लोकप्रियता और जनता के प्रति समर्पण की वजह से उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, गोपीनाथ बारदोलोई ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। असहयोग आंदोलन सहित कई राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य, अहिंसा और जनसेवा के आदर्शों का पालन किया। दोस्तों, भारत को आजादी मिलने के बाद उन्हें असम का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने असम की सांस्कृतिक पहचान, एकता और विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के बंटवारे के समय उन्होंने असम के हितों की दृढ़ता से रक्षा की और असम को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने असम और पूर्वोत्तर भारत के भविष्य को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी महान सेवाओं को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, आज उनकी जयंती के दिन हम भारत के इस महान विभूति को श्रद्धापूर्वक नमन कर देते हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नाटिका घर की गंगा, जिसे लिखा है कृष्ण रूप स्वरूप सक्सेना ने और निर्देशित किया है प्रकाश सक्सेना ने। तो आइए सुनते हैं ये नाटिका।

0: ये दंगा ये फसाद आखिर ये सब हो क्या रहा है?
1: ये भगवान क्या किया?
0: हाँ जाए, घर भी बहुत
1: पाएंगे। समझते ही नहीं,
0: समझते

0: नहीं,
1: समझ में नहीं आता कि इंसान को हो क्या गया है, कहां जाए क्या करें कुछ समझ में नहीं।
2: आदमी आदमी को मारते हुए झगड़ा, दंगा, फसाद, तुम किधर जाओ, चलो जीने पर चलता हूं, कोई भला आदमी पता दे नहीं देगा।
0: अरे जहूरे, जल्दी जल्दी कर, मुए सीने का दरवाजा बंद कर, जल्दी कर।
2: ये मैं कहां आ गया, मालूम होता है किसी भाई जी का कोठा है।
3: अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए,
0: बैठिए।
4: जो लोग रास्ते में फंस गए हो वे अपने अपने ठिकाने पर चले जाएं। एक घंटे बाद कर्फ्यू लगने जा रहा है।
0: सलाम हुजूर, मैं अमीन भाई। अब देखिए ना, खुदा के लिए बस एक नजर, मैं क्या दंगाइयों से भी बुरी हूँ?
2: अमीन भाई, वाकई वाकई तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती बाहर के बनाव सिंगार को शिकस्त दिए हुए है। अच्छा अब चलता हूँ, ये रख लो
0: बाबूजी। ये किस लिए? ना मैंने मुजरा किया और ना आपने जाइए, ले जाइए इसे, नहीं तो रुलाई आ जाएगी।
2: अमीन भाई रख लो, रख लो इसे, रख लो, फिर काम है।

अचानक सर्दी बढ़ गई। कोई बात नहीं, अभी 6 ही तो बजे हैं, लेकिन हवाखोरी का भी तो यही वक्त है। अरे ये कैसी आवाज है? कोई बच्चा रो रहा है। अरे ये तो अभी अभी पैदा हुआ लगता है, झाड़ी में ठिठुर कर मर जाएगा। इसे बचाना होगा, इसे बचाना होगा।

0: अरे आप बाबूजी, इतनी सवेरे? आइए, ये गोद में क्या छिपा रखा है?
1: चलो पूछ लिया, अच्छा ही किया। अमीन भाई लो संभालो इसे।
0: अरे ये तो बच्चा है, कैसे लाए बाबूजी?
1: कहां से लाया हूं अब ये मत पूछना, किसका है नहीं जानता अमीन भाई, पर अमीन भाई इसे तुम पाल सकोगे? अरे
0: इस बदनाम घर में क्या इसकी परवरिश मुनासिब होगी?
1: ओ अमीन भाई,

0: ने भी ना उम्मीद कर दिया।
1: ना उम्मीद नहीं कर रही हूँ बाबूजी। बैठी तो फिर मेरी तपस्या का कोई मकसद नहीं होगा। इस घर में इस जिंदगी के साथ और सवाल जुड़ जाएंगे। मैं समझती हूँ कुछ और सोचिए बाबूजी।
0: कुछ और सोचूं? अच्छा, कुछ और सोचूंगा, पर फिर कभी किसी वक्त आकर इसे उसी नाले में फेंक आऊंगा, है ना? अभी तो संभाल लो तुम। अच्छा, मैं चलता हूं।

0: भागीरथी जी, मजा खत्म हो गया। दीदार किया कि यहाँ कोई और सौदा नहीं होता, समझ गए ना?
1: जानता हूँ भाई जी, मगर एक सवाल।
0: सवाल?
1: क्या इस बच्चे के लिए तुम किसी की दुल्हन बन जाओगी?
0: हकीकत है, बशर्ते कोई तैयार हो और वो भी दिल से।
1: इतना मुश्किल फैसला तुमने इस बच्चे के लिए कर लिया जो तुम्हारा अपना नहीं है।
0: जिंदगी में इनकलाब हालात ही लाते हैं भागीरथी साहब, ये भी कोई जिंदगी है? सिर्फ मजबूरी के हाथों जीना है, जिंदगी नहीं।
1: तो तुम्हें जीना नहीं, जिंदगी चाहिए अमीन भाई?
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, इन आंसुओं को अतीत के हवाले कर दो और अपना हाथ दो।
0: क्या?
1: हाँ मेरे घर की गंगा।
0: सच? तुम सच कह रहे हो?
1: बिल्कुल सच।
2: यार भागीरथी, है आज तेरे लड़के का बर्थडे है, है? और नाचने गाने का कोई प्रबंध नहीं।
3: हाँ यार, ये क्या बात है भाई?
1: क्या बताऊं यार,
2: मैं बताता हूँ यार। अरे भाभी, आखिर नाचने गाने वाली ही तो है।
3: दफा हो जाओ।
2: ठीक है,
3: कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से।
2: जा रहा हूँ। ठीक क्यों रहे?

0: आपसे एक बात कहूं?
1: कहो।
0: संजू बड़ा हो रहा है, मैं समझती हूँ कि उसे ऐसे माहौल से बचाना होगा।
1: हाँ गंगा, यही मैं भी सोच रहा हूँ।
0: सिर्फ सोच ही रहे हैं?
1: नहीं, चलो कहीं बाहर चलते हैं।
2: गंगा।
0: बाबूजी आप?
2: भागीरथी, तुम लोग शहर छोड़कर जा रहे हो, संजू भी जा रहा है, ठीक ही है। शायद गंगा का कल ही ठीक था।
1: नहीं बाबूजी, गंगा का कल ठीक नहीं था, इसी मकसद की भलाई के लिए ही दूर जाना पड़ रहा है।
2: चलो, अच्छा ही सोचा। संजू जिस दिन पढ़ लिख जाएगा, वो स्थान जहां संजू रहेगा अपने आप हरिद्वार हो जाएगा। शादी होगी, बच्चे होंगे, तो संगम और अरे तो रो रही है गंगा पगली।
0: बाबूजी, जिस अमीन बाई को गंगा बनकर इतनी मंजिलें मिल जाए, उसकी खुशियों का अंदाजा लगाना क्या आसान है।
1: गाड़ी का वक्त हो रहा है बाबूजी।

0: प्रणाम बाबूजी।
1: मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ। सुखी रहो मेरे बच्चों, सुखी रहो।

0: घर की गंगा। अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका, जिसे लिखा था कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने और निर्देशित किया था प्रकाश सक्सेना ने। श्रोताओं, हम कार्यक्रम में एक बार फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
2: आपके संदेश
3: संदेश से आते हैं,
2: आपके गीत
3: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
2: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
0: प्रणाम अध्याय कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम संबंधी एक जरूरी सूचना सुन लीजिए। दिनांक 8 जून 2026 को दिन सोमवार, समय 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376804090। नंबर एक बार फिर सुन लिए 7376804090। समय याद रखें दिनांक 8 जून 2026 को शाम 5:30 पर। सूचना समाप्त हुई। और श्रोताओं, प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक सुंदर से गीत सुनने का। ये गीत हमने लिया है फिल्म दूसरा आदमी से किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन एवं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछा ने अपनी पत्नी निकिता पौडेल के साथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए।

क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के संस्थान संयोजन में 8 जून को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीगंज में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी। 18 वर्ष से 35 वर्ष के हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डिप्लोमा और प्रशिक्षण संस्थान युवा इसमें पंजीकरण करा सकते हैं।

राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और उपयोगी पहल की गई है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक से लैस हो गई है। वेबसाइट पर शुरू किया गया AI असिस्टेंट हनु श्रद्धालुओं को मंदिर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध करा रहा है।

0: रामनगरी में रामकथा पार्क के पास एक भव्य अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बन रहे इस परिसर का निर्माण नवंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल,
0: और श्रोताओं इसी के साथ समाप्त होता है आज का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम का ये अंक। नमस्कार।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
4: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
3: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
4: फोन नंबर 91-61-877-347।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतहर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम आ गए हैं लेकर आपकी भेजी गई फरमाइश के गीत। और आज कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश हमें मिला है रामगंज खंडवा MP से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू और इनके समस्त परिवार वालों का। आज इन्होंने फिल्म प्रेम बंधन के गीत को सुनने की फरमाइश की है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। तो हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत आपकी रेडियो सेट पर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम बंधन का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और कार्यक्रम का अगला संदेश हमें मिला है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का। आज आप सबने फिल्म अनोखी अदा का गीत सुनना चाहा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म अनोखी अदा का ये गीत।

0: पिता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
6: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
5: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
6: जी हाँ, और वो है योग।
5: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
6: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
5: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
6: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
5: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
6: योग करिए, निरोग रहिए।
7: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और दोस्तों, अब शामिल करते हैं कार्यक्रम का अगला संदेश, जिसे भेजा है गाटके नगर यवतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे और समस्त लोखंडे परिवार ने। आज आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म बगावत का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ में। तो हम भेज रहे हैं आपका पसंदीदा गीत आपके रेडियो सेट पर।

और दोस्तों कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू का। आज आप सबने फिल्म बड़े दिलवाला का गीत सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज में। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म बड़े दिलवाला से।

दोस्तों कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में हमें अगला संदेश जो मिला है उसे भेजा है आकोट महाराष्ट्र से बालू पाटिल सविता पाटिल नितिन पाटिल और नलिनी पाटिल ने। आज आप सब ने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का गीत सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। तो आपकी पसंद का गीत हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सुनत हूँ सखी, सुनते हूँ कार्यक्रम मंगनामा होने वाला है का खास?
6: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनते है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
5: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
4: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
5: और साथ में अपना नाम, पता
4: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
5: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
6: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
0: बातें आसपास की कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतहर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी अयोध्या नगरी सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी ही नहीं बल्कि अनेक जीव जंतुओं का भी आश्रय स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में बंदर पाए जाते हैं जो इस शहर की पहचान का हिस्सा बन गए हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अक्सर बंदरों को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें खाना खिलाने, छेड़ने या उनके साथ तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्यवहार कई बार बंदरों और लोगों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा करने से बचना चाहिए।

दोस्तों, बंदर भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं। उन्हें भी स्वतंत्र रूप से जीने, भोजन तलाशने और अपने समूह के साथ रहने का अधिकार है, जैसे हम सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
2: बातें आसपास की कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोस्तों, जब लोग बंदरों को परेशान करते हैं, उनकी तरफ सामान फेंकते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं तो वो डर या गुस्से में आकर आक्रामक हो सकते हैं और ऐसे

दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक व्यवहार के साथ रहने देना चाहिए। बार बार भोजन देने से उनकी स्वाभाविक आदतें बदल जाती हैं और वो इंसानों पर निर्भर होने लगते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

दोस्तों, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जिम्मेदारी है कि वो बंदरों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाएं, उनसे उचित दूरी बनाए रखें, उन्हें अनावश्यक रूप से भोजन ना दें और उनसे किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचें। अगर हम उनके लिए दया और सम्मान का भाव रखेंगे

0: हॉस्पिटल नियावा फैजाबाद अयोध्या द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू सुनना ना भूलें कल रविवार रात 8:15 से। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: अभी आप सुन रहे थे आसपास से जुड़ी समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें आसपास की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 MHz FM बैंड पर। प्रस्तुत है पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। आज के मेहमान हैं आकाश गुप्ता।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बात।

0: बातचीत इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
2: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पी रहे थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
2: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
2: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
2: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
2: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
2: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
2: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
2: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
2: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव

0: की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो। आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग आने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ भाग 4। हमारे आज के मेहमान थे आकाश गुप्ता। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 MHz FM बैंड पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की कार्यक्रम।

संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो?

तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती है, पलकों पर बिठाती है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगे या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हूँ, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया,

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहे और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी

पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए, लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत

भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: ये आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

0: अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत

कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमिन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हीरानी ने किया था। गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का। और हाँ

हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो है राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस

हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो है राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्रबुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था और जैसा कि हमने बताया शांतनु मोहिता ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।

0: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
1: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: प्लैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो करियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है और अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद जरूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

0: ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है, जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं, जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये अयोध्या केंद्र है 1.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल, भाग 5।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, Now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
3: Vishesh Shrinkhla, Modi Sarkar ke 12 saal ke antargat aaj suniye, sukshm, laghu aur madhyam udyogon ke vikas ke liye pramukh neetigat sudharon aur pehlon par sukshm, laghu aur madhyam udyam mantralay ke sachiv Bharat Kheda ke sath vishesh sakshatkar. Sakshatkar kar rahe hain Arjun ji Chaudhary.
4: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in the growth and empowerment of MSMEs. Bharat Kheda ji, a warm welcome to you on this podcast.
5: It's a matter of pleasure to be here with you today.
4: And the reason why we are having this special discussion on MSMEs is the growth of the number of the entities that are in business right now, entrepreneurship, the employment that all of this has brought in, and really the contribution to the gross domestic product of the economy as well. But we'll try and simplify it for the benefit of our listeners on Akash.

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

0: कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे ये सहगान।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हेलो
4: हेलो सुनो, टेलीफोन नंबर,
5: माय नंबर इज
6: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो

0: अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: सुनैन आई हॉस्पिटल नियामा फैजाबाद अयोध्या द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू सुनना ना भूलें कल रविवार रात 8:15 से।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 102.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। प्रस्तुत है सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: आपका हमनामा, आपका मेजबान, आपका हमदम, आपका दोस्त हाजिर है आपका हर दिल अजीज कार्यक्रम लेकर, सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। तो डायल करिए हमारा नंबर 7376804090 और हमसे कीजिए बातें और सुनिए अपनी पसंद के गीत। आइए देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कहाँ से हैं। हेलो।
8: हाँ सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। जी कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
8: जी मैं अर्जुन कुमार सोनकर, मोहल्ला छोटा रमना, देवकाली रोड, अयोध्या सर।
3: जी क्या करते हैं अर्जुन जी?
8: जी दुकान है सर, पान की। पान पे बैठे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
3: हाँ तो ये दुकान आपकी पान की कितने बजे रात तक चलती है?
8: हाँ 8 बजे तक सर।
3: 8 बजे तक, तो कार्यक्रम 8 बजे तक आप हमारे साथ रहते हैं?
8: हाँ 8 बजे, यहाँ 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद घर पे।
3: अच्छा 8 बजे के बाद जब हमारी सभा चलती है तो आप घर पे उसका आनंद लेती हैं?
8: सब घर जाते हैं तो दूसरा रेडियो चालू करते हैं। दो रेडियो है ना सर
3: जी, एक दुकान पे,
8: घर पे।
3: बहुत

0: अच्छा बहुत अच्छा। हमारे जब श्रोता
1: वो आपका प्रोग्राम खत्म होने तक चलता रहता है।
0: जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आकाशवाणी अयोध्या से इतना प्यार करते हैं कि आपने दो रेडियो ले रखा है, एक दुकान के लिए और एक घर के लिए। बहुत अच्छा लगा। अर्जुन जी आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है गुलामी सर।
0: गुलामी का कौन सा गीत?
1: पीले पीले शराब तो पीले, वही गाना है सर।
0: जी हम ये गाना आपको सुना रहे, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म गुलामी से। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी सर धन्यवाद।

0: गुलामी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अर्जुन कुमार जी की पसंद पर, जिन्होंने हमें रमना देवकाली अयोध्या से फोन किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फरमाइश गीत बजे आकाशवाणी अयोध्या पर, तो उठाइए फोन, डायल करिए 7376804090। आइए देखते इस नंबर को अब किसने डायल किया है। हेलो,
1: हाँ जी
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम है जी,
0: कहाँ से फोन किया है आपने?
1: राम कॉलोनी से।
0: राम शरण जी क्या करते हैं?
1: जी मैं फोटो बनाता हूँ।
0: फोटो बनाते हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो आपकी कोई अपनी शॉप है कि कहीं जो है अलग काम करते हैं?
1: नहीं सर, हम घाट को सुबह घूम के बेचते हैं ना, सर्दी नदी किनारे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ सुबह जाते हैं 6 बजे 9 बजे तक रहते हैं, धूप हो जाती भाग जाते हैं
0: फिर शाम को फिर जाते हैं।
1: फोटो तो बनाते बैठ के ना अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जाते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छा, अपने हर काम को तन्मयता से करना चाहिए आप जिस तरह से करते हैं। और इस कार्यक्रम जी जी आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी राजा हिंदुस्तानी गाए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनते।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको अलका याग्निक की आवाज में ये गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फॉर इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। नमस्कार
1: जी। नमस्कार सर,
0: कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
0: जी सुरेश जी।
1: जी सर।
0: क्या करते हैं?
1: खेती बाड़ी का काम जी।
0: खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो आजकल खेती बाड़ी में क्या काम चल रहा है आपके यहाँ?
1: आजकल वो पोल लगा रही है जी धान की।
0: जी जी।
1: और ये जून के लास्ट में उसको रोपाई उसकी हो जाएगी जी।
0: जी, पंजाब में मौसम कैसा चल रहा है?
1: मौसम तो गर्मी है जी।
0: जी, गर्मी इधर भी बहुत पड़ रही है।
1: पाँच छह दिन बाद मौसम कुछ ठंडा हो जाता है, दो तीन डिग्री कम हो जाता है जी, कोई आंधी वगैरह आ जाती है।
0: जी जी जी जी। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सुरेश जी?
1: गीत है फिल्म लव इन टोक्यो का
0: जी,
1: और गीत के बोल हैं जी, ओ मेरी शाह है गुवा, ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे साथ होते हो कोई दूसरा नहीं होता।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर, धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: सुरेश गगनेजा जी की आवाज में, सुरेश गगनेजा जी की फरमाइश पर अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से ये गीत, जिन्होंने हमें पंजाब से फोन किया था, काफी दूर से। आई देखते हैं अब हमारे अगले कलर कहाँ से हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अध्याय कार्यक्रम में। अपना परिचय बता दीजिए।
1: सर मेरा नाम सुनील कुमार है
0: जी,
1: अयोध्या से जी, ग्राम भारतीपुर से बोल रहे हैं।
0: क्या करते हैं सुनील जी?
1: जी सर ये खेती वेती का काम।
0: खेती में आजकल क्या कर रहे हैं आप?
1: सर जो पेड़ पौधा मतलब ये सब लगाए हैं वही सब चीज बात करते हैं सर।
0: अच्छा, खेती से जब छुट्टी मिलती है आपको, खाली समय होता है तो आप क्या करते हैं?
1: ना सर,
0: जब खाली समय होता है खेती से तब क्या करते हैं आप?
1: तब सर कुछ नहीं, बस पेड़ पौधा जो घास वहाँ से रहता है वही साफ कर देते हैं, आजू बगल पौधों में पानी पत्ता डाल देते हैं।
0: अच्छा, ये पहली बार आपका फोन लगा है, किससे पहले आप प्रयास कर चुके?
1: लग
0: चुके
1: बहुत फोन लगाते थे सर, रात में 9 बजे 9:30 से 10:30 तक फोन का हरदम बिजी रहता था सर।
0: चलिए आज ये आपका सौभाग्य मिला कि आपका फोन लग गया, हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आज पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते
1: हैं?
0: हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पानी खूब पीते रहिए, सूती कपड़े पहनिए, धूप में जाने से बचिए। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी सर, तेरे नाम माके ओढ़नी ओढ़ के नाचूं।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म तेरे नाम से। धन्यवाद फोन करने के।
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फॉर इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारा नंबर है 7376804090। आइए देखते हैं इस नंबर को अब किसने डायल किया है। हेलो
1: हेलो
0: जी, कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर
0: तहसील जी। मध्य प्रदेश में कैसा मौसम चल रहा है आपके शहर में, आपके नगर में?
1: हम बहुत अच्छे हैं
0: जी। हारून जी,
1: जी
0: आपके नगर में आपके शहर में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: मौसम अच्छा है, गर्मी पड़ रही है और बादल भी छाए हुए हैं।
0: अच्छा, बादल और गर्मी के बीच जो है संघर्ष जारी है आपके यहाँ भी?
1: हवाएं भी चल रही
0: है। हारून जी क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम भी सुनते हैं आप वहाँ अपने यहाँ?
1: जी मोबाइल ऐप से जल्दी सुनते हैं, फोन कार्यक्रम अच्छा लगता है।
0: अच्छा, फोन कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया आपका। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दिल के अत्याचार।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको ये नगमा, धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल का क्या कसूर फिल्म से ये गीत, और इस गीत को पसंद किया था मध्य प्रदेश विदिशा से हारून जी ने। बड़े दूर से फोन आया था इनका और ये आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम सुनते हैं, इनको हेलो अयोध्या काफी पसंद है। तो आइए देखते हैं हमारे अगले कलर अब कहाँ से हैं। हेलो
1: जी, हेलो सर, नमस्ते सर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम में। कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: सर, तेज बाजार बस्ती से फोन किया सर।
0: नाम क्या है आपका?
1: राम अवतार अग्रहरी नाम है सर।
0: राम अवतार अग्रहरी, पहली बार फोन किया कि इससे पहले आप कर चुके हैं इस कार्यक्रम में?
1: नहीं, इससे पहले भी किए हैं सर।
0: इससे पहले भी किए हैं, तो आज इस कार्यक्रम में आपने फोन किया है, तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बागवान का सर।
0: बागवान का गीत हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं राम अवतार जी करते क्या हैं?
1: अजी सर, रेडीमेड कपड़े की दुकान है
0: बस्ती में, रेडीमेड कपड़े की दुकान। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं?
1: काम सर लगभग 15 से 18 साल से ऊपर हो गया।
0: 15 साल से 18 साल, काफी अनुभव हो गया होगा इस काम में आपको। पढ़ाई के बाद तुरंत आपने शुरू कर दिया था ये काम की जो है?
1: पढ़ाई के साथ साथ
0: काम शुरू किया था। ये बहुत अच्छा किया कि आपने पढ़ाई भी की और साथ में स्वरोजगार का एक अपना सपना पाले हुए थे उसको भी आपने पूरा किया। तो आपको काफी अच्छा लगता होगा कि आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपनी दुकान में काम करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। क्यों राम अवतार जी?
1: हाँ जी सर।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको बागबान फिल्म का ये गीत, सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम बस अब समाप्ति की ओर है। आइए जल्दी से अपने आखिरी कॉलर से बात करते हैं आज इस कार्यक्रम के। हेलो
1: हेलो
0: जी, कहाँ से फोन किया, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम शाजिया है, मैं अयोध्या काशीराम कॉलोनी से बात कर रही हूँ।
0: जल्दी से बता दीजिए अपनी पसंद।
1: जी मुझे मोहम्मद रफी का गाना सुनना है।
0: मोहम्मद रफी का गाना हम सुनवा रहे हैं, धन्यवाद फोन करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का।
1: ओके सर।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन्फॉर्मेशन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इस पूरे कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक सुचारू रूप से पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा अश्वनी शुक्ला जी का। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

आपका हमनवा, आपका मेजबान, आपका हमदम, आपका दोस्त हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है कुछ तुमने कहा। आज इस कार्यक्रम में हमारे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं, हम उनमें सभी को कोशिश करेंगे शामिल करें। ये पहला जो कमेंट है फेसबुक पर वो है शिव चौहान का, बाबा कुटीर रायगढ़ से। रमेश कुमार पटेल नगर मरोड से। नई दिल्ली टैगोर गार्डन रविंद्र सिंह छाबड़ा जी। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू। उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश से भैरूलाल धाकड़। कोल्हापुर महाराष्ट्र से राहुल। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से मसरूर हसन। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद प्रकाश मिड्ढा। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा। हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा। सांगली से अल्ताफ हुजरे। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बडलकर। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से श्रेयस।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कुछ तुमने कहा। इस कार्यक्रम में हम आपके कमेंट शामिल करते हैं और आपकी

समाज का कोई गीत बजाते हैं। तो ये संदेश, ये कमेंट्स हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर का, और इन्होंने राजा और रंग फिल्म का नगमा पसंद किया है। इसी के साथ हम कुछ और भी इस गाने के साथ कमेंट शामिल कर रहे हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा

नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय और गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, हनुमानगढ़ी टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, सिंघौली बरेली से जिशान वारसी, रघुनाथपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, रामगढ़ कैंट झारखंड से कमल, लाहौड़ा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, कंवर कॉलोनी खरगोन से प्रवीण शिमाली, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: सुनैन आई हॉस्पिटल नियामा फैजाबाद अयोध्या द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू सुनना ना भूलें कल रविवार रात 8:15 से।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
3: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
2: ध्यान रहे मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
3: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
2: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
5: नहीं अछूता हो जिस
4: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
6: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। इस कार्यक्रम में ये कमेंट है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन एले का, और इन्होंने अपने कमेंट्स में फिल्म साजन का गीत सुनने की फरमाइश की है। इनका गीत हम सुनवाएंगे और साथ ही इस गीत के साथ हम कुछ अपने श्रोताओं के नाम शामिल करेंगे। ये नाम है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, रघुवीर नगर से दिलावर खान, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजपाल राज, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, पुटियाकला दुर्ग से संजय साहू, कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, हरहरपुर मटकली बरेली से शाहरून नूर अंसारी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र और हिसार से राजकुमार डूडी, कालका से शुभचंद्र बजाज, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी।

उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह ने अपने कमेंट में राम तेरी गंगा मैली फिल्म से गीत सुनने की फरमाइश की है। इनका गीत हम सुनवाएंगे, लेकिन उसके साथ इसी गीत के साथ हम अपने और श्रोताओं के भी नाम शामिल करना चाहेंगे। ये नाम है धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, भोजपुर सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, लसूढ़िया राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, श्रीरामपुर से अशोक दले, जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, गनगोला दातागंज से इशरत खान, सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, ऐशबाग लखनऊ से वारसी अली, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, उज्जैन से विनोद मूरत।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत, और इस गीत की फरमाइश और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा जी। और इसी गीत में हम अपने इन तमाम श्रोताओं के नाम शामिल करते हैं। पंजाब से मिंटू थॉमस, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, पंचकुला चंडीगढ़ से तुलसीराम मस्कीन, दूल्हापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकाल, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, नई बस्ती गजडुंडवारा से मोहम्मद यासीन, ग्राम गुदुनपुर पोस्ट जगदीशपुर बस्ती से आशीष, हरदोई रोड लखनऊ से खितलू परवेज़।

0: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। दिनांक 8 जून दिन सोमवार को समय 5:30 से सजीव फोरिन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय होगा कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376804090। समय याद रखिएगा 8 जून शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 MHz FM बैंड पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532 21909।

0: प्यार है। अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में ये गीत। चिंता की डोली में परियों की झोली में शहजादी आई मेरी। सुना थे सखी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल

0: दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन दिन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ी

0: चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा

0: राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर। बहने सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
3: योग करिए, निरोग रहिए।

0: सभी श्रोता बहनों को मंजू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? आशा है हमारी सभी बहनें स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगी। बहनों देखिए, आज शनिवार है और शनिवार को हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम होता है हेलो सहेली। तो कोई सहेली हमारी साथ जुड़ रही है तो उनसे लेते हैं उनका हालचाल। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसी हैं?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मैम?
0: मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, आप हमारे प्रोग्राम की पहली कॉलर हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत दिनों से सुन रही हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग अपने कार्यक्रम में जो बातचीत कर रहे हैं उसका विषय है ईंधन बचाने के क्या क्या विकल्प अपनाती हैं आप। विषय आपको समझ में आया?
1: हाँ मैम।
0: तो किस तरह से ईंधन को बचाती हैं? हेलो हेलो बहनों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं ईंधन बचाने के क्या क्या विकल्प अपनाती हैं आप। और बहनों देखिए, ये जो कार्यक्रम होता है हेलो सहेली, ये खास हमारी सखियों के लिए है। तो हम अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि वो सखियों को मौका दें और इस

0: कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारी सखियों को डायल करना होगा नंबर 7376 80 40 90। और कोई सखी हमसे जुड़ रही है, देखिए बहनों आप प्रयास करिए तो जरूर आप कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी और उसमें शामिल होंगी, अपनी बात कहेंगी, अपने विचार हमसे साझा करेंगी। हेलो हेलो, नाम बताइए। देखिए आपने फोन मिलाया है, बात करिए। मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको नंबर मिलाना होगा 7376 80 40 90। तो देखिए बहनों ये हेलो हेलो, हमारी बहनें प्रयास कर रही हैं लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रही हैं। और बहनों देखिए जब आप हमें कॉल करिए इस प्रोग्राम में तो थोड़ा सा आप अपने रेडियो से दूर हो जाइए क्योंकि उससे जो है आपसी बातचीत में बाधा होती है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्ते, मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ।
0: ज्योत्सना जी कहाँ से बोल रही?
1: जिला
0: अयोध्या से। ज्योत्सना जी आज हम लोग कार्यक्रम में बात कर रहे हैं ईंधन बचाने के लिए क्या क्या विकल्प अपनाती हैं। देखिए बहनों हम जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हम ईंधन को बचाने की बात कर रहे हैं कि हम ईंधन को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए बहनों ईंधन से हमारा मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम रसोई घर में जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए, ईंधन से हमारा मतलब वो सभी ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो, हाँ
0: नाम बताइए।
1: मैं बबली गुप्ता।
0: बबली जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: अयोध्या सब्जी मंडी से।
0: अयोध्या सब्जी मंडी से। देखिए बबली जी आज हम लोग बात कर रहे हैं ईंधन को बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, और थोड़ा सा आप अपने रेडियो से दूर हो जाइए तो हमारी आपकी बात अच्छे तरीके से हो पाएगी क्योंकि बहुत शोर आ रहा है।
1: बचाने के लिए हम खाना बनाने से पहले अपनी सारी तैयारियां करके रखें।
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: और कुछ?
1: और क्या बोल सकते हैं?
0: देखिए खाना बनाने से पहले
1: सारी तैयारियां करके रखें।
0: हाँ
1: उसके बाद गैस को ऑन करें।
0: और ऐसा ना हो कि जब हम हाँ बोलिए
1: जो बचा सकते हैं।
0: लग रहा है आप प्रोग्राम में शामिल होने की इतनी ज्यादा इससे मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप कुछ और बोल नहीं पा रही हैं।
1: नहीं हम पहले से ही थोड़ा बिजी थे और पहली बार मेरा फोन लगा है, ट्राई तो कब से कर रहे थे, आज पहली बार मेरा फोन लगा है।
0: तो देखिए आपके प्रयास में ही कुछ कमी होगी क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता हैं जो प्रत्येक शनिवार को शामिल होते हैं, है ना। तो आप कोशिश आज आपने की है, अच्छी कोशिश की है तो आप प्रोग्राम में शामिल हो पाई हैं। चलिए कॉल करने के लिए धन्यवाद। बहनों देखिए ईंधन बचाने के बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम अपनाकर ईंधन को बचा सकते हैं क्योंकि ईंधन को बचाना केवल हमारे अपने लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी है। बहनों ईंधन से हमारा मतलब सिर्फ रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली गैस से होता है। और देखते हैं कोई सखी हमसे जुड़ रही है। हेलो, तो देखिए बहनों जब हम रसोई की बात कर रहे हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, नाम बताइए। हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए।
2: मेरा नाम हर्ष है।
0: हर्ष है, तो क्या करती हैं आप? देखिए बहनों हम अपने श्रोताओं से अपनी श्रोता बहनों से ये अनुरोध करते हैं कि जब आप कार्यक्रम में शामिल हो तो प्लीज हमसे बातचीत करिए,

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते
1: नमस्ते, नाम बताइए।
0: मैम मेरा नाम रितु राजपूत है।
1: क्या नाम है?
0: रितु राजपूत मैम।
1: रीति राजपूत। रीति राजपूत कहाँ से बोल रही हैं?
0: मैं ग्राम
1: अयोध्या
0: से बात कर रही
1: हूँ। देखिए रीति जी, आज हम बात कर रहे हैं कि ईंधन को हम किस किस तरह से बचा सकते हैं। आप विषय समझ रही हैं?
0: हाँ मैम समझ रही हूँ।
1: तो ये जैसे अभी हमारे आपसे पहले एक श्रोता बहन आई थी, तो उन्होंने बताया कि हम ईंधन को बचाने के लिए रसोई में जब जाएं तो सबसे पहले हम अपने खाने की तैयारी कर लें, तैयारी के बाद ही हम रसोई में अपना काम करें, है ना, भोजन को पकाएं। तो

0: रसोई में अपना काम करें, है ना, भोजन को पकाएं। तो आप क्या मतलब किस तरह से आप ईंधन की बचत करने का क्या क्या उपाय अपनाती हैं?
1: मैम जैसे कि खाना बनाने के लिए पूरा पहले सामान इकट्ठा कर लें, उसके बाद में गैस जलाए, फिर उसके बाद में पूरा खाना बना लें धीमी आंच में बनाए, तो फिर इससे ईंधन कम लगता है और टाइम की बचत भी होती है मैम।
0: तो जब आप रसोई में जाती हैं तो रसोई का पूरा काम निपटा कर ही बाहर निकलती हैं कि साथ में कुछ और भी काम करने लगती हैं?
1: नहीं मैम, मैं पूरा काम निपटा कर ही रसोई से बाहर निकलती हूँ मैम।
0: हाँ, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई काम को एक साथ शुरू कर लेते हैं और उसमें कुछ काम तो संवर जाते हैं और कुछ काम बिगड़ भी जाते हैं। और इसीलिए देखिए कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो इसलिए एक समय में एक काम करना चाहिए तो उससे हमारा काम भी सफल होता है और हमें खुशी भी मिलती है। चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं? चलिए, कॉल करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। देखिए बहनों, हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप कार्यक्रम में शामिल हों तो प्लीज आप हमसे बात करिए और जो है रेडियो से थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि देखिए आप कॉल पे आ भी गई हैं, लाइन हमारी बिजी हो गई है, तो हमारी और बहनों को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये अनुरोध है हमारा आपसे कि जब आप कार्यक्रम में शामिल हों तो प्लीज पूरे दिल से शामिल हों, है ना। मैंने देखिए, ईंधन का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि हम रसोई में जो गैस इस्तेमाल करते हैं खाद्य सामग्री को पकाने के लिए, और भी बहुत से ऐसे सोर्स हैं ईंधन का उपयोग करने के काम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल की, डीजल की, तो ये भी हमारी ऊर्जा का एक साधन है और इससे भी हमारा जीवन बहुत सरल होता है। तो हमें इनकी भी बचत करनी चाहिए। और इनकी बचत हम कैसे करें? जब भी हम कहीं जाएं, अगर हमें थोड़ी दूर रास्ता तय करना है तो थोड़ा पैदल चल लें, उससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और अगर आप थोड़ी लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने साधन से जाएं, तो अपने साधन से जाने के बजाय अगर आप सार्वजनिक साधनों का उपयोग करेंगी तो उससे जो है वो बचत होगी पेट्रोल की, डीजल की। तो इस तरह से ऐसे अगर हम थोड़ा सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें, हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक हैं या अप्राकृतिक हैं, हमें उनकी बचत करनी है। हेलो, हेलो, नमस्ते। देखिए आप तो बहुत छोटी सी लग रही हैं। हेलो, देखिए आपकी मम्मी हो तो उनसे बात कराइए, आप मुझसे क्या बात करेंगी इस कार्यक्रम में?
2: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बताइए।
2: मेरा नाम काव्या, मैं अयोध्या कॉलोनी से बात कर रही हूँ।
0: काव्या जी क्या करती हैं?
2: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आप रसोई में काम करती होंगी, भोजन पकाना?
2: जी जी बिल्कुल।
0: तो
2: जी जी,
0: तो किस तरह से क्या उपाय अपनाती हैं कि आप जो है जो रसोई में गैस इस्तेमाल करती हैं या इंडक्शन इस्तेमाल करती हैं?
2: बस यही इस्तेमाल करते हैं कि खाना बनाने से पहले सारी तैयारियां कर लेते हैं और जब खाना बनाने खड़े होते हैं तो अपनी मम्मी को साथ में कर लेते हैं। और जो है उसके बाद में रोटी बनाने के लिए दो लोग खड़े हो जाते हैं, लोग जल्दी जल्दी डालते हैं, दूसरे लोग सेकते हैं, इससे भी बचत होती है। और मैम कुछ खाना चूल्हे पे भी अगर ज्यादा है तो कुछ खाना चूल्हे पे जो है बन जाता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप चूल्हे का भी इस्तेमाल करती हैं, है ना, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से शहरी जीवन हो गया है उसमें चूल्हा जलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक, अब तो इस तरह के घर बन रहे हैं,
2: लेकिन मैम जो है चूल्हे पे तो खाना भी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी हो भी जाता है।
0: बिल्कुल, बस यही होता है कि उसमें आप एक सिरते से लगी रहिए तो आपका भोजन भी बढ़िया बन जाता है, समय भी कम लगता है और स्वादिष्ट भी बनता है।
2: आजकल तो मैम पेट्रोल डीजल इतनी सारी महंगाइयां हैं कि जिससे जो है इंसान अपने घर की गाड़ी कम यूज करे और बाहर का ज्यादा यूज करे, ये ज्यादा सही है।
0: बिल्कुल, और देखिए जैसे बहुत से आज के समय में जो हमारी बहनें हैं वो वर्किंग वुमेन हैं और उनसे भी हम लोग यही कहेंगे कि जब वो कहीं

0: जा रही हैं, तो जैसे आप पड़ोस में हैं, आप पड़ोसी हैं, एक दूसरे से अच्छी आपकी तालमेल है, और वैसे भी पड़ोसी से तालमेल बना कर ही रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे सभी समय में पड़ोसी ही सबसे पहले आता है। तो अगर आपको कहीं जाना है और उनको भी जाना है, उनका गंतव्य भी कुछ दूर पर है या रास्ते में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लोग साथ चले जाएं, तो उससे क्या होगा कि उससे भी हम ईंधन की बचत कर लेते हैं,
1: है ना? और क्या मैम, ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन आजकल की दुनिया में अपना लोग भला सोचते हैं, दूसरों का कम सोचते हैं।
0: लेकिन देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि केवल हम अपना भला सोचें, तो फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय है ना? क्योंकि देखिए, जिस तरह से हम हमारी बहनें हैं, माता पिता हैं, ये जितने भी लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए धन संचय करते हैं, है ना? पर अगर हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे, तो धन संरक्षण का, धन संचय करने का कोई मतलब नहीं है, है ना?
1: और क्या मैम, आजकल की ऐसी लागू हो गई है, लाइफ हो गई है कि जो है हम लोग अपने से ज्यादा दूसरों को देखें, तो उससे हम लोग को कुछ फायदा भी होता है, अच्छा भी लगता है, अपने भी तन मन को सुकून मिलता है कि हाँ, हमने किसी की हेल्प की है, वो भी मेरे बाद में काम ही आता है।
0: बिल्कुल, और देखिए, हेल्प किया है तो निस्वार्थ भाव से हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है, अगर वो मेरे मौके पे बुरे समय पे वो मेरा साथ देता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो ये उसकी अपनी मानसिकता है, है ना?
1: और क्या मैम, फिर ऊपर वाला तो है ही है, वो तो कहीं ना कहीं कदम कदम पे तो हम लोग को
0: सहारा देता है। कदम कदम पे क्या, वो जीवन के हर क्षण, हर एक घड़ी पे हमारा सहारा देते हैं, है ना? हमारा सहारा बनते हैं। चलिए, कॉल करने के लिए धन्यवाद। और देखिए बहनों, हम जब खुशहाल रहना चाहते हैं, तो अपनी जरूरतों को पूरा करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम खुश रहेंगे, है ना? और अब मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पुलिस?
6: मिस सीमा
5: जी,
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
5: क्यों, लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
5: डिजिटल अरेस्ट?
6: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
5: इतने पैसे?
6: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
5: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
7: हेलो मम्मा।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
12: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com, ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: मैंने स्वागत है एक बार फिर से हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली में, और कोई सहेली आ चुकी है फोन कॉल पर। हेलो
13: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
13: सपना सिंह बात कर रही हूँ मैम, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।
0: सपना जी अयोध्या से बोल रही हैं। सपना जी, आज का जो विषय है, अगर आप प्रोग्राम सुन रही हैं तो आपको पता भी होगा। हेलो
13: हेलो,
0: हाँ सपना जी, हाँ आप कार्यक्रम सुन रही हैं तो आपको विषय पता होगा कि आज हम लोग किस विषय पर बात कर रहे हैं।
13: नहीं मैम, विषय बता दीजिए।
0: अच्छा, देखिए आज का जो विषय है वो है कि ईंधन को बचाने के लिए क्या क्या विकल्प अपनाती हैं।
13: ईंधन को बचाने के लिए सबसे पहले मैम खाने की

0: पूरी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद में ही खाना बनाना शुरू करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और आप पढ़ाई
0: और मैम,
1: कर
0: अगर कोई लकड़ी पे खाना बनाते हैं या फिर कंडे पे बनाते हैं, कोयले से बनाते हैं, उतना ही ईंधन यूज करें जितने की जरूरत हो खाना बनाने में, और उसमें ना डालें।
1: ना डाले, बिल्कुल सही। आप क्या करती हैं, पढ़ाई कर रही हैं कि और कुछ?
0: नो मैम, पढ़ाई नहीं करती हूँ।
1: जी, क्या कर रही हैं फिर?
0: मैम मैं राइटर हूँ, प्रोमो वगैरह लिखती हूँ और एंकरिंग भी कर चुकी हूँ।
1: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रही है आपसे बातचीत करके। तो देखिए,
0: थैंक यू मैम।
1: और देखिए, सबसे पहले यह है कि मतलब ईंधन को लेकर सबकी अपनी अपनी एक समस्या है ना। कहीं पर घरेलू गैस की समस्या है, कहीं पर पेट्रोल और डीजल की समस्या
0: है। मैम, एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए हर गृहिणी को, जब भी खाना बनाए तो वहां से हटना नहीं चाहिए।
1: तो मतलब अगर क्या ये माना जाए कि ईंधन की बचत सिर्फ गैस की ऐसी चीजों की बचत करना है जो हमारे खाद्य पदार्थों को पकाने में हमारी मदद करते हैं?
0: यस मैम।
1: नहीं, देखिए ईंधन
0: खास ख्याल रखना चाहिए, खाना बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, टाइम की भी बचत होगी और ईंधन की भी बचत होगी। हाँ। अगर ये नहीं कि खाना चढ़ा के वहां से हट जाए।
1: और देखिए, जब हम कहीं जाते हैं तो भी ईंधन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, है ना। और जैसे आप इस समय गर्मी का मौसम है, हर घर में एसी चल रही है, तो भी कहीं ना कहीं वो ईंधन का ही सोर्स है। ठीक, उसमें भी ईंधन खर्च हो रहा है। तो प्राकृतिक ऊर्जा के जो सोर्स हैं उनको भी हमें बचाना चाहिए। अब बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, वो भी ऊर्जा हमें दे रही है, पानी से बिजली बन रही है, तो हमें जल का भी संरक्षण करना है। ठीक है, तो हमारी मानसिकता हर एक चीज का, केवल हम केवल गैस सिलेंडर तक सीमित ना रहें। ठीक है, तो इस तरह से हमें हर चीज की बचत करनी है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं? तो बहनों देखिए, जैसे हम लोग जब कहीं जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम सार्वजनिक साधनों का ही प्रयोग करें। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो,
1: हाँ नमस्कार, नाम बताइए। नमस्ते, नाम बताइए।
2: अनीता।
1: अनीता जी कहाँ से बोल रही हैं?
2: स्वामी नारायण कुटिया से बोल रहे हैं जी।
1: कहाँ से?
2: स्वामी नारायण मंदिर के पास से बोल रही हैं।
1: अच्छा, पिया से बोल रही हैं।
2: हाँ मैम।
1: चलिए, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज देखिए,
2: बहुत दिनों के बाद फोन लगा, लग नहीं रहा, बहुत बार लगाते परेशान हो जाते।
1: देखिए, दिल से कोई भी काम अगर किया जाए तो वो सफल जरूर होता है।
2: आज 6-7 महीने के बाद फोन लग गया है, बहुत ज्यादा।
1: चलिए, वो आपकी खुशी ऐसे ही बनी रहे, और हर शनिवार को आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। ठीक है।
2: हाँ मैं हमेशा रेडियो सुनती हूँ, मैं रेडियो ही सुनती हूँ ज्यादातर।
1: चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप रेडियो के नियमित श्रोता हैं। और देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ईंधन को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या विकल्प ऐसे हैं जिसको हम अपना कर ईंधन की बचत कर सकते हैं।
2: मैम खाना बना रहे हैं, सब चीज पहले इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद गैस जलाते हैं, फिर खाना बनाते हैं।
1: ठीक,
2: सब्जी चावल जो चीज करना है सब इकट्ठा कर लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं।
1: और ज्यादातर
2: गैस की बचत होती है, टाइम भी जल्दी में हो जाता है।
1: और भोजन को ढककर अगर हम पकाते हैं तो भी हमारी ईंधन की बचत होती है, है ना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी बहुत सी बहनें हैं, हो सकता है वो ऐसा करती हों कि फ्रिज से कोई भी सामान निकाला और उसको गर्म करने के लिए तुरंत गैस पर चढ़ा दिया और गैस ऑन कर दिया, तो उससे क्या होता है कि वो खाद्य सामग्री गर्म होने में टाइम लेता है, है ना, उससे हमारा ईंधन ज़्यादा खर्च होता है। तो इस तरह से जब हम खाना बना रहे हों, तो अगर खाना बना रहे हैं तो सारा ध्यान हमारा उसी खाना बनाने पर ही हो, है ना। ये ना हो कि हम इधर खाना बना रहे और उधर जाकर कपड़े धुलने लगे तो पता चला कि गैस चल रही है और जो खाद्य सामग्री हम पका रहे थे वो भी नहीं अच्छी बन पाई, है ना, उसका भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से बहुत सूझबूझ से छोटी छोटी सी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहती हैं? हेलो। चलिए,
2: कॉल नहीं लग रहा, बार बार लगाओ क्योंकि फोन नहीं लगता कभी कभी।
1: चलिए, आज लग गया ना।

0: चलिए तो बहनों, अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ देना है तो आज हमें उसके लिए बचत करनी पड़ेगी। हेलो हेलो हेलो हेलो। और देखिए बहनों, ईंधन हमें प्राप्त होता है प्रकृति से, है ना? तो हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हमें अपनी प्रकृति का भी संरक्षण करना जरूरी है। और देखिए, अब ईंधन की समस्या का समाधान गोबर गैस के रूप में भी निकाला जा गया है और हमें लगता है ये कारगर भी है, है ना? तो हर जगह तो ये संभव नहीं है, लेकिन जहाँ संभव हो है वहाँ पर लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और बहनों, केवल धन की बचत को ही हम बचत के रूप में केवल धन को ना देखें, बल्कि उन सारे प्राकृतिक संसाधनों की बचत करें जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रहता है, है ना? क्योंकि जीवन में जल, वायु, हवा, ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं और ये हमें मिलती हैं प्रकृति से। और ये प्रकृति के से मिलने के लिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ साथ चलेगी, है ना? जिस तरह से हवा, जल, ये सारी चीज़ों का जो सोर्स है वो है पेड़ पौधे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ईंधन हमें इन्हीं से मिल रहा है ना? और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: और बहनों इसी गीत के साथ दीजिए अनुमति मंजू को नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी जगत। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड पर। अब आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम
1: मन चाहे गीत।

0: escorregui.
1: Mancharregui.
0: Mancharregui.

0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ढप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मशरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने की ख्वाहिश

मुख्यमंत्री आप सभी शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरे की भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा।

रिसोर्ट से आप हैं सानवी, सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: शहजादियों और बेगमात पर जुल्म है।
2: हाँ।
1: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
2: ये सब मंसूर अली की दगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
1: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
2: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं, ऐसा नहीं होगा।
1: तुम ठीक कहते हो। आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
2: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब की चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम बना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साए में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ

0: लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
1: जी हाँ चाहपना, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी

0: जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
0: जहां बना,
1: अगर से शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
0: जी हाँ आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
0: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
0: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
0: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
0: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहां बना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
0: आली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है, क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां बना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां आली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं, उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलम बना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें। मगर हुजूर पता नहीं कि इससे

नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। चैपना का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलम पना, इधर इस अंग्रेज कम

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना, ये मौजा धनौली है। यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे, ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर, जरा पता लगाओ।
0: आलमपना, ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलमपना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें बर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में, अब ये जग गया, लहू मुलक गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों

0: सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं है कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
0: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूं कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
1: शुक्रिया।
0: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
1: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
0: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
1: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और रेमेडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है।
0: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
1: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो नाम थे उसके। और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो बहुत प्यार मिला और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
0: उस जमाने में, तो
1: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने। तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते थे, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
0: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
1: अरे वो जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रेजर्स हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रेजर्स हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव

0: आप था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी। डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके। आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलोक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ। और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सब ही सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलोक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम।
1: Okay. Bonium का, okay.
0: Bonium, 1975 में तो एक गाना था, Brown Girl in the Ring, tra la la la la, so वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है। हाँ। अजीब दास, मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते

0: कॉन्फिडेंट था फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया. तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया. वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई. तो उसकी वजह से वो है ना, एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ. चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है. एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है.
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने. बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं. वो डर मेरा चला गया. तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा. अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है. तो मैं शायद उसमें बच गया. तो

0: पेरेंट्स, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोले कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देते थे उनको डांस सीखना था तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल होगी?
1: 17 साल की थी।
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली।

0: क्यों देखो, मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैं साइंस, मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ रहा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीकेमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने, तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस की एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग, मेरे दो मेरे भाई बहन, तो तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है। आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों, दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
0: हाँ,
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहां गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में, फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़,
1: कई बार मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ें।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था, और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को

खुश करना चाहता था या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: गीत तो हमने सुन लिया, जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पी रहे थे, मुझे दिखते क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाम लगाई।

0: तुम्हारे लगा दे।
1: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
2: शुक्रिया।
1: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
2: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा था कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
2: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
2: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था। उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे

0: में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगे गया। तो मैंने लगा कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
1: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की
0: तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
0: तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मतलब कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तो पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोषी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: कहानी है,
0: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए,
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: स्कूल्स
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होते हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बिठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वाज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। It was so sweet, क्योंकि मैं बहुत, I think was only 24 years. He says, मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे, वो हमारी जिम्मेदारी। और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू विल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती की अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली, गाना ARM का गाना था वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ

0: आप क्या है सर, मुझे कुछ नहीं आता कैमरे के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिमिता सर को बता रहे कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। सर आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: तो और बड़ी कलाकार बड़ी फिल्म थी
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और स्टूडियो की घड़ी में

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, आपकी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह के साथ। साथियों आज है शनिवार और आज हम आपके लिए लाते हैं बहुत कुछ खास। जी हां दोस्तों, आज चर्चा का विषय होने वाला है योग और एकाग्रता। साथ ही आप सुनेंगे कलेक्ट्रेट अयोध्या में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। फिर हमारी धरोहर में जाना जाएगा महाबलीपुरम के स्मारक समूह के बारे में। आर्थिक जगत में बात होगी NPA की और साथ ही आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से जीनत की बातचीत। और चलते चलते हीट वेव के बारे में भी बात करेंगे और आपके लिए मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी होंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं चर्चा की ओर। दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी जरूरत हम सबको हर सेकंड पड़ती है, चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हो, ऑफिस के डेडलाइन से जूझ रहे प्रोफेशनल हो या घर संभालती एक माँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एकाग्रता यानी फोकस की। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हमारा ध्यान हर 2 मिनट में फोन के नोटिफिकेशन पर जाता है, वहां मन को एक जगह टिकाना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और जानते हैं इस सुपर पावर को पाने का सबसे आसान और वैज्ञानिक रास्ता क्या है? हमारा अपना प्राचीन विज्ञान। जी हाँ, मैं योग की बात कर रही हूँ। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि योग का मतलब सिर्फ शरीर को अलग अलग आकृतियों में मोड़ना या मुश्किल आसान करना है, लेकिन ये सच नहीं है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग का असली मकसद ही है चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मन में उठने वाले विचारों के तूफान को शांत करना। वैज्ञानिक रिसर्च भी यही कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक हम इंसान अपने जागते हुए समय का लगभग 47% हिस्सा उन चीजों के बारे में सोचने में बिता देते हैं जो हम उस वक्त कर ही नहीं रहे होते, यानी मन हमेशा पास्ट या फ्यूचर में भटकता रहता है। योग हमें इसकी भटकाव से बचाकर आज और अभी में जीना सिखाता है। जब हमारा मन वर्तमान में टिकने लगता है तो हमारी एकाग्रता खुद ब खुद बढ़ने लगती है। साथियों अब आप सोच रहे होंगे कि योग करने से दिमाग में ऐसा क्या बदल जाता है, तो चलिए थोड़ा साइंटिफिक होकर बात करते हैं। मेडिकल साइंस की एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि जब हम नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते हैं तो हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्से में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ जाती है। दिमाग का यही हिस्सा हमारे फोकस, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे योग करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, उसका लेवल तेजी से कम होता है। जब तनाव कम होगा तो दिमाग शांत होगा और एक शांत दिमाग एक अशांत दिमाग के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एकाग्रता के साथ काम कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। आप रोज सुबह अपने घर पर सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल कर ये 3 बेहद आसान चीजें कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम, त्राटक, अनुलोम विलोम। फिर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि योग एक कला है, एक आदत है जिसे रोज रोज की प्रैक्टिस से कमाना पड़ता है। योग कोई धर्म नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक वेलनेस साइंस है। योग से एकाग्रता भी बनी रहती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही से बल्कि अभी से अपने फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत महसूस कीजिए और हमें सुनते रहिए। तो साथियों चर्चा में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कलेक्ट्रेट अयोध्या में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
4: युवा साथियों, जिलाधिकारी सभागार में दिनांक 1 जून को मेधा सम्मान समारोह का

0: आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में टॉप 10 विद्यार्थियों को माननीय जिला अध्यक्षा श्रीमती रोली सिंह, माननीय सदर विधायक श्रीमान वेद प्रकाश गुप्ता जी और माननीय विधायक गोसाईगंज श्रीमान अभय सिंह जी के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान के सिंह और DIOS के द्वारा बच्चों को सम्मानित कर उन्हें 21,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आपके लिए प्रस्तुत है।
1: हमारे जनपद के 3 विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में शामिल हैं। 9वीं रैंक है उनकी उत्तर प्रदेश में, आराध्या जायसवाल, जिन्हें 96.33 अंक मिले हैं, 98.17% अंकों के साथ। प्राची पांडे और अंबिका कसौधन भी उस कार्यक्रम का हिस्सा है। 75 जिलों में हमें 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंश प्रताप सिंह 96% अंकों के साथ। तालियां बजनी चाहिए बच्चे के लिए। 21,000 की एक राशि भी हमारे सारे बच्चों को दी जा रही है और प्रशस्ति पत्र मेडल माल्यार्पण के साथ साथ।
2: श्रीमती रोहिणी सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष,
3: 10वीं रैंक तक अपना स्थान बनाए रखा है, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस टॉप 10 में पोजीशंस उन्होंने ही क्रैक की, जिन्होंने अपने पे कंट्रोल रखा, जिन्होंने अपने में बिलीव रखा। तो आप सब आज यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। सक्सेस की ओनली की है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ बिलीव। आज हर पेरेंट्स भी अवेयर है कि हम अपने बच्चों को हर प्रकार की वो सुविधा दें, हर प्रकार की उपकरणों से उन्हें लैस, किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत ना हो कहीं भी किसी प्रकार से नॉलेज ग्रैब करने के लिए। अपने बच्चों को हम आज ज्यादा लाड प्यार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक दो बच्चे हम सोशल मीडिया जो भी चाहे वो दे दें। मैंने बड़े बड़े स्कूलों के टीचर्स को रोते हुए देखा है कि मैम अगर हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो पेरेंट्स हमें ही दोष देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फर्स्टली आप रिस्पेक्ट करिए टीचर्स को और आप अपने बच्चों को सिखाइए कि गुरुजन के रिस्पेक्ट आपको करना है। वो गुरु ही है, वो आदर वो टीचर है, आदर वो कोचिंग सर है। उनको रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाएं। सबसे बड़ा की यही होता है। छात्राओं की संख्या अधिक है, छात्रों की संख्या कम है, तो मैं मेरे बेटों से आग्रह करूंगी कि कृपया वो भी आगे आए, क्योंकि ये दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं जिनका बराबर चलना आवश्यक है। मैं आशा करती हूँ कि आपका ये मेडल राष्ट्र को चमकाएगा आपके साथ साथ।
1: माननीय विधायक गोसाईगंज अभय सर को आमंत्रित करता हूँ। आपकी तालियां बजा मैम के लिए।
4: धन्यवाद संचालक महोदय। इस जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोहिणी सिंह जी, अयोध्या के सदर विधायक और हमारे विधायक आदरणीय श्री जय गुप्ता जी, CDO साहब श्री के सिंह जी, मेधावी छात्रों के विद्यालयों से आए हुए सभी प्रिंसिपल, सभी उनके अभिभावकगण और सभी हमारे मेधावी छात्र, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं कि आप आज इस जगह पे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किए जा रहे हैं। आपके लिए बहुत सम्मान विषय। इसके लिए मैं आपको और आपके परिवार वालों को और आपके शिक्षकों को बहुत बधाई। स्मार्ट क्लास बनाए, पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं दी, कंपोजिट स्कूल किया, जिन सरकारी विद्यालयों में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे अंग्रेजी में पढ़ाई होगी, वहाँ अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई उन्होंने शुरू कराया। ब्लॉक स्तर पर सारे विद्यालय चिन्हित किए गए, उनको शुरू कराया। जो गरीब से गरीब है, कमजोर से कमजोर भी, शिक्षा से वंचित न रह जाए। डिग्री होल्डर मत बनिए, इंटरमीडिएट किया है, हमारा बेटा BA किया है, एग्रीकल्चर किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो डिग्री होल्डर है, ज्ञान उनको नहीं प्राप्त है। दीक्षांत समारोह होता है, शिक्षांत समारोह कभी नहीं होता है, शिक्षा हमेशा मिलती रहेगी। आप
3: माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, सदर विधायक जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ।
2: बधाई देना चाहता हूँ अपने बेटे बेटियों को। प्रदेश में जनपद का नाम ऊंचा करने का काम किया है, हम लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्मार्ट क्लासेस, बच्चों को माहौल पढ़ने का, स्टेडियम बने, मिनी स्टेडियम बने ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का सम्मान मिले। आप सब बेटे बेटियों को बधाई और शुभकामना। अमर उजाला परिवार के लोगों ने भी बच्चों को सम्मानित करने का काम किया। ब्रजेश सिंह जी, आपको और आपके पूरे अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद।
0: चला बातचीत करने अपने उन मेधावी छात्रों से जिन्हें 10 स्थानों तक रैंक मिली और जिन्हें आज कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।
5: अर्पिता मौर्य, आर कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मेरे 12th में 89.8%।
0: प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी?
5: PN श्री कंपोजिट विद्यालय, मुमताज नगर।
0: 8वीं तक आपने वहाँ पढ़ा है? हाई स्कूल में कितने मार्क्स थे आपके?
5: 89।
0: अच्छा, तो बस 90 को टच करने के लिए आप बच रही हैं बार बार। तो अर्पिता, आप पहले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की गांव के मुमताज नगर में, आपने बताया, और उसके बाद आप आरकन्या में यहाँ पर शहर में आके पढ़ रही हैं। कितने समय की पढ़ाई करती थी आप?
5: रात को 3-4 घंटे पढ़ाई, सुबह भी पढ़ाई करती, टाइम टेबल से जितने पढ़ते थे बस।
0: मोबाइल कितना चलाती थी?
5: 1-2 घंटे चलाती।
0: क्या उसमें देखती थी मोबाइल में?
5: पढ़ाई का वीडियो देखती थी।
0: सोशल मीडिया में जुड़ी हैं आप?
5: यस।
0: कितना समय देती हैं?
5: 1 घंटे।
0: 1 घंटे सोशल मीडिया को देती हैं, बाकी 2-3 घंटे पढ़ाई।

0: मोबाइल से पढ़ाई, और बाकी क्या कहना चाहेंगे जो और भी विद्यार्थी जो इस रेस में लगे रहते हैं कि उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन मिल जाए?
1: खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है। और
0: आपने हमसे बातचीत की अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शिवानी यादव, 12th है मेरा और मेरे 91.4%
0: है। वेरी गुड। किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर मिले?
1: सर केमिस्ट्री और मैथ्स में इक्वल है, 97।
0: ग्रेट। क्या बनना चाहती है?
1: PM बनना चाहते हैं।
0: अरे वाह। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, इंटर के बाद?
1: सर ग्रेजुएशन।
0: क्या सब्जेक्ट रहेंगे?
1: फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैथ्स ही करना चाहूंगी।
0: अदिति,
2: क्लास 10th में 95.33।
0: बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप करती थी क्या?
2: जी।
0: ज्यादा फायदा किसमें आपको मिलता था, ऑनलाइन क्लासेस का कि ऑफलाइन जो आप पढ़ रहे हैं?
2: दोनों।
0: क्या कहना चाहेंगे उन साथियों से जो इस बार तैयारी करेंगे हाई स्कूल की?
2: अच्छे से मेहनत करें और आ जाएगा, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने माता पिता के साथ उनकी सारी बातें माने कि अच्छे से पढ़ना है।
0: आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी बातचीत होने जा रही है एक बच्चे के अभिभावक से।
3: मैं अशोक यादव बेसिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत और मेरी बेटी जहाँ अध्ययन कर रही है ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है।
0: पहले तो बहुत बधाई कि आपकी बिटिया ने 95 अंक लाकर जनपद में स्थान प्राप्त। हम ये जानना चाहते हैं एक माता पिता का जो एंगल होता है, आप शिक्षक भी हैं,
3: श्रीमती जी भी जो है बेसिक शिक्षा में ही शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत,
0: टिप्स आपके तरफ से होंगी दो चार?
3: एक पुल पर हम साइकिल चढ़ाने लगते हैं तो हमारे पैरों को बहुत दर्द होता है, लेकिन इस झंझावात को झेल करके यदि हम साइकिल को पुल पे चढ़ा ले जाते हैं तो दूसरी तरफ बिना पैंडल मारे हमें आराम मिलता ही मिलता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और 8 से 10 घंटे खूब जम के पढ़ाई करें। कोई भी ताकत नहीं है कि उनको सफल होने से रोक सके। प्रतिदिन टोका टाकी ना करें, जहां पर उन्हें समस्या महसूस हो हमारे पर्यवेक्षण में, हमारे निगरानी में अगर कहीं हमारा बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है तब हम निश्चित रूप से उन पर टोका टोकी तो करें ही, एक दोस्त बन करके उनका मार्गदर्शन करेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से सफल होगा।
4: जी, मेरा नाम है डॉक्टर अमिता सिंह। स्कूल की एंट्री पे ही सारे बच्चों के नाम और उनके पद लिखे हुए हैं, तो बच्चा जैसे ही गार्जियन एंट्री करता उसको लगता है कि हम यहाँ जा रहे हैं पढ़ने, तो कुछ बन के जरूर निकलेंगे।
0: बच्चे हैं ये न केवल अपनी स्कूल से एजुकेशन ग्रहण करते हैं, अपने शिक्षकों से शिक्षा लेते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के समय में देखा जा रहा है ना, बच्चे बड़ी संख्या में इस पर जा रहे हैं।
4: कहीं न कहीं ये बात बहुत कड़वा सच है ना, जो मेरे बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, नामी स्कूलों में पढ़े जहाँ के बच्चे बहुत टॉप करते हैं, लेकिन वो बच्ची का कहना है कि मम्मी टीचर से नहीं समझ में आता, जो ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं उनसे समझ में आता है, तो इस पे बहुत गंभीरता से काम करना होगा।
5: मैं श्री लाला राम मदर सेंटर कॉलेज पल्लवी।
0: प्रथम स्थान आपने जनपद में प्राप्त किया है, क्या बनना चाहती है?
5: IAS अधिकारी।
0: यहाँ जाइए सर को आपने सुना है, CDO सर को, तो वहाँ से मोटिवेशन मिल गया, टॉप कर गई है इंटरमीडिएट में, बहुत बड़ी बात है। मोबाइल से कितने घंटे पढ़ती?
5: 2-3 घंटे पढ़ती थी। और
0: ऑन स्क्रीन आप 2-3 घंटे पढ़ती थी?
5: यस सर।
0: जब 2-3 घंटे आप ऑन स्क्रीन पढ़ रहे होते हैं बेटा, तो उसी समय उस मोबाइल में कभी कभी कुछ मैसेज भी आ जाते हैं?
5: यस सर।
0: कभी कॉल्स भी आ जाती होंगी?
5: यस सर। जब भी पढ़ाई करती थी फ्लाइट मोड लगा के पढ़ाई करती थी। सर मेरे लिए ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन बेटर है, डेली 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी करती।
0: आपका क्या नाम है बेटा?
5: सर रूपाली यादव, 4th रैंक, 91%।
0: इंटरमीडिएट में?
5: यस सर। डॉक्टर लर्निंग।
0: डॉक्टर क्यों बनेंगी, कहाँ से प्रेरणा मिली?
5: मम्मी।
0: कितने घंटे पढ़ लेती थी आप?
5: 5 से 6 घंटे डेली।
0: मोबाइल से कितने देर पढ़ती थी?
5: ज्यादा नहीं, बस 1-2 घंटे। सारा डाउट स्कूल में क्लियर हो जाता था, जो बचता था उसके लिए संडे में भी चले जाते थे।
0: मम्मी पापा क्या करते?
5: पापा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं और मम्मी घर पे काम करती है।
0: पेट्रोल पंप पे वो फ्यूल डालने का काम करते हैं और मम्मी घर पे रहती हैं। रूपाली, आपने हमसे बातचीत की और जनपद में आपने स्थान प्राप्त किया है, आपको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए, जरूर अपना सपना पूरा करिए और मम्मी का सपना पूरा।
6: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कलेक्ट्रेट अयोध्या में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट, संकलन था सदक हुसैन का। साथियों अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जो है हमारी धरोहर। साथियों आज मैं आपको घर बैठे ले चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ हवाओं में समंदर की लहरों का संगीत है और पत्थरों में इतिहास की धड़कन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु के खूबसूरत तटीय शहर महाबलीपुरम के स्मारक समूह के, जिसे मल्लारपुर भी कहते हैं। सोचिए आज से लगभग 1300 से 1400 साल पहले, जब हमारे पास ना तो बड़ी बड़ी क्रेन गाड़ियां थी और ना ही आज की आधुनिक मशीनें, तब कुछ कलाकारों ने केवल एक छैनी और हथौड़ी से पूरे के पूरे पहाड़ों को काट कर रख दिया था। आज हम जिन आलीशान इमारतों को देखकर हैरान होते हैं, महाबलीपुरम के कलाकारों ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के दौरान वैसा ही जादू पत्थरों पर बिखेरा था। यही वजह है कि साल 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया यहां खींची चली आती है। वहां सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगा पंचरथ। इन्हें महाभारत के 5वें पांडवों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है, लेकिन कमाल की बात जानते क्या है, ये कोई ईंट पत्थर जोड़कर बनाए गए मंदिर नहीं है, एक विशालकाय खड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए ये 5 अलग अलग

0: रथनुमा मंदिर बनाई गई है, यानी एक भी जोड़ नहीं। इसे आर्किटेक्चर की भाषा में मोनोलिथिक कहते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पल्लव राजाओं ने पत्थरों पर कविता लिख दी हो। वहीं पास में एक और अजूबा है जिसे गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर रॉक रिलीफ है। एक बहुत बड़ी चट्टान पर सैकड़ों देवी देवताओं, गंधर्वों और यहाँ तक कि असली आकार के हाथियों और बंदरों को उकेरा गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भागीरथ की तपस्या के बाद गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर उतर रही हैं। और हाँ, अगर आप महाबलीपुरम जाएं और कृष्णा की बटर बॉल के साथ फोटो ना खिंचवाएं तो यात्रा अधूरी है। ये एक विशाल गोल मटोल चट्टान है जो एक ढलान वाली पहाड़ी पर सदियों से बिना हिले डुले टिकी हुई है। देखने वाले को लगता है कि ये अभी लुढ़क जाएगी, लेकिन विज्ञान भी हैरान है कि यह गुरुत्वाकर्षण को मात देकर वहां कैसे टिकी है। कहते हैं कि एक बार राजाओं ने इसे हाथियों से खिंचवाकर हटाने की कोशिश की थी, पर हाथी हार गए, ये पत्थर नहीं हिला। महाबलीपुरम सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं है दोस्तों, ये गवाह है हमारे पूर्वजों की कला, उनकी सोच और उनकी लगन का। अगर कभी मौका मिले तो चेन्नई से महज 60 किलोमीटर दूर बसे ये ऐतिहासिक शहर को करीब से जरूर महसूस कीजिएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: सुनिए,
3: कहिए, कहिए,
2: सुनिए।
4: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: साथियों, इस छोटे से अंतराल के बाद आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पे युवा साथियों से जीनत की बातचीत।
2: मेरा नाम मुस्कान यादव, मैं अयोध्या के रहने वाले। रेडियो सुनना अच्छी बात है क्योंकि हम किसी भी काम करते समय भी सुन सकते हैं, परिवार के साथ भी सुनते हैं, हमें अनेक खबरें भी प्राप्त होती हैं, हमें अनेक जानकारियां जैसे मौसम की, कृषि की या स्वच्छता के बारे में भी जानकारियां, पुरानी गीत भी प्राप्त सुनने को मिलती है, इसलिए रेडियो सुनना अच्छा लगता है।
3: मेरा नाम गरिमा शर्मा है, मैं अयोध्या में रहती हूँ। आप सबको आकाशवाणी सुननी चाहिए, आकाशवाणी से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मेरे घर में सब आकाशवाणी सुनते हैं और आपको भी सुनना चाहिए, इससे बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिलते हैं और आप इसे ऑन करके दूसरा काम भी कर सकते हैं।
4: मेरा नाम सेजल है, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ और रेडियो हमें सुनना चाहिए। रेडियो में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है और रेडियो में अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे समाचार भी सुनने को मिलते हैं। मेरे घर में सभी रेडियो सुनते हैं, आप सबको भी सुनना चाहिए।
5: मेरा नाम रिया यादव है, मैं अयोध्या से बोल रही हूँ। आकाशवाणी अयोध्या सबको सुनना चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं जैसे सखी सहेली, दूरदर्शन और क्या कहते हैं समाचार, सब्जी मंडी भाव।

0: और हम सुनते भी हैं और आप लोग को सुनना भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी और गाने भी आते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, मैं साहबगंज अयोध्या की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि युवा और रेडियो हमारे लिए कितना जरूरी है। आकाशवाणी में हमेशा समाज की आवाज बनकर लोगों को जानकारी, शिक्षा और प्रेरणा देने का कार्य किया है। रेडियो की आवाज केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि लोगों को जोड़ने और जागरूक करने का भी काम करती है। आकाशवाणी में समय के साथ बदलते भारत की आवाज को हमेशा आम लोगों तक पहुंचाया है। आकाशवाणी आज भी लोगों के दिलों से जुड़ा वह माध्यम है जिसकी आवाज में अपनापन और विश्वास महसूस होता है। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और सही जानकारी उन्हें सही दिशा देती है। आकाशवाणी ऐसा ही एक माध्यम है जिसे हमें जरूर सुनना चाहिए। धन्यवाद।
2: नमस्कार, मेरा नाम चांदनी है और मैं अमानीगंज की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमेशा भरोसेमंद खबरें देता है और सोशल मीडिया के फेक न्यूज के जमाने में आकाशवाणी से 100% वेरीफाइड न्यूज मिलती है। सरकारी योजनाएं, मौसम, आपदा की चेतावनी सबसे पहले और सही मिलती है। दूसरी बात ये कि ये फ्री में ज्ञान बढ़ाता है, जैसे कि किसानवाड़ी, विज्ञान व युवाड़ी जैसे प्रोग्राम से, और खेती, साइंस, करियर की भी फ्री जानकारी मिलती है। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती।
3: नमस्कार, मैं रितेश श्रीवास्तव, टीकापगंज अयोध्या। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आकाशवाणी का हमारे जीवन में महत्व। आकाशवाणी वर्षों से लोगों का विश्वास जीतता आया है और आज भी इसकी लोकप्रियता बरकरार है। आकाशवाणी ने हर दौर में समाज को सही जानकारी और सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया है। आकाशवाणी की पहचान केवल उसकी आवाज नहीं बल्कि लोगों के दिलों से उसका जुड़ाव भी। आकाशवाणी सुनना हमें देश दुनिया की जानकारी के साथ अपनी संस्कृति से भी जोड़े रखता है। इसकी आवाज में देश की संस्कृति, परंपरा और मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। हमें आकाशवाणी जरूर सुनना चाहिए क्योंकि यह है मनोरंजन के साथ ज्ञान और जागरूकता का भी सशक्त माध्यम। धन्यवाद।
4: नमस्कार, मेरा नाम सैफ है, मैं अवधपुरी कॉलोनी फैजाबाद से हूं और मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। मुझे इसके सारे कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। आकाशवाणी सुनने से दिमाग रिलैक्स होता है। इसके प्रोग्राम किसानवाड़ी से खेती की टिप्स, युवाड़ी से करियर गाइडेंस, फ्री का खजाना मिलता है, पढ़ाई और तैयारी में मदद मिलती है और 100% पक्की खबर मिलती है, अफवाह नहीं होती है। ये हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है। यूट्यूब रील्स में एक वीडियो के 50 वीडियो देख लेते हैं, रेडियो में सिर्फ सुनना होता है तो काम के साथ फोकस बना होता है। तो मेरे मानने से सिर्फ एक लाइन में, जीरो खर्चा, जीरो टेंशन, सिर्फ ज्ञान और मनोरंजन। और अंत में सभी को यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी हमें नियमित रूप से सुनना चाहिए, ज्ञान, सूचना और प्रेरणा का सरल माध्यम है।
5: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर युवा साथियों से जीनत की बातचीत। साथियों, वक्त हो चला है हमारे अगले और आखिरी सेगमेंट आर्थिक जगत का, जिसमें आज हम जानेंगे एनपीए के बारे में, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं। आसान बोलचाल की भाषा में कहें तो ये बैंकों के लिए एक ऐसा डूबता हुआ कर्ज है या बैड लोन है जिससे बैंक को ना तो ब्याज मिल रहा होता है और ना ही मूलधन। जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लोन लेती है और उसकी किश्तें चुकाना बंद कर देती है तो एक निश्चित समय के बाद उस लोन को बैंक की भाषा में एनपीए घोषित कर दिया जाता है। जब तक लोन लेने वाला इंसान समय पर अपनी ईएमआई यानी किश्त चुका रहा है तब तक वो स्टैंडर्ड एसेट्स यानी अच्छा लोन कहलाता है। लेकिन अगर कोई लगातार 90 दिनों तक अपने लोन की किश्त या ब्याज नहीं चुका पाता तो बैंकिंग नियमों के अनुसार उस लोन को अकाउंट को एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एनपीए को 3 चरणों में बांटा गया है। शुरुआत में जब कोई लोन जो होता है वो 12 महीने या उससे कम समय के लिए डूबा रहता है तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं, जिसमें पैसा लौटने की थोड़ी उम्मीद रहती है। लेकिन जब लोन 12 महीने से ज्यादा फंसा रहता है तो वो डाउटफुल एसेट्स में आ जाता है जिसकी रिकवरी मुश्किल होती है। और आखिरी में जब बैंक को पूरा यकीन हो जाता है कि ये पैसा अब कभी वापस नहीं मिलेगा तो उसे लॉस एसेट यानी पूरी तरह डूबा हुआ मानकर बैंक के खाते को हटा दिया जाता है। साथियों जब कोई लोन एनपीए बनता है तो इससे बैंक को मिलने वाला ब्याज और कमाई रुक जाती है और नियम के मुताबिक लोन डूबने के डर से बैंक को अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बैकअप यानी प्रोविजनिंग के रूप में अलग

रखना पड़ता है। इससे बैंक के पास बाजार में दूसरों को लोन देने के लिए पैसे की कमी हो जाती है। भारी एनपीए के कारण शेयर बाजार में बैंक के शेयर गिरने लगते हैं और समाज में उसकी साख खराब होती है और इससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पर हालिया में देखा जाए पिछले एक दशक में सुधार हुआ है। एनपीए का ग्राफ काफी नीचे आया है और ये सरकार और आरबीआई की सख्ती से हुआ है। साथियों, एनपीए होने के दो कारण हैं। एक है इंटरनल रीजन और दूसरा एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन ये है कि बैंक बिना जांच पड़ताल किए बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दे देता है। इसे क्रॉनी कैपिटल्स कहते हैं। लोन लेने वाले के नियत खराब होना भी इसका बड़ा कारण है, जिसे विलफुल डिफॉल्टर्स कहते हैं, जो जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाले होते हैं। एक्सटर्नल रीजन की बात करें तो बाजार में मंदी आ जाना, किसी खास इंडस्ट्री का ठप हो जाना या कोविड-19 जैसी अचानक आई महामारी, जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस बंद हो गए और वे चाहकर भी लोन नहीं चुका पाए। साथियों, आखिरी में जानेंगे कि बैंक अपना पैसा वापस कैसे वसूलता है। जब कोई लोन एनपीए बनता है तो बैंक सर्फेसी एक्ट के तहत बिना कोर्ट गए गिरवी रखी प्रॉपर्टी को नीलाम करके या आईबीसी कानून के जरिए डिफॉल्टर कंपनी को किसी दूसरे खरीदार को बेचकर अपना पैसा वसूल लेती है। इसके अलावा छोटे कर्जों की बात करें तो लोक अदालत और बड़े मामलों के लिए डीआरटी बनाए गए हैं। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए बैड बैंक एनएआरसीएल को पुराने और बड़े एनपीए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ताकि बैंक अपना पूरा ध्यान नए बिजनेस और आम जनता को लोन देने पर लगा ले। दोस्तों, एनपीए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए धीमे जहर की तरह है। एनपीए का कम होना आर्थिक तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का, जो है फिल्म मोहब्बते से, गाया है लता और उदित ने, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: साथ ही इस चिलचिलाती गर्मी में आप अपने पास इमरजेंसी किट जरूर रखें, जिसमें पानी की बोतल, ओआरएस के पैकेट, इसके अलावा एक सूती रुमाल या गमछा, जिसे ज्यादा धूप होने पर आप अपने सर पर रख सकें। धूप का चश्मा रखें, हो सके तो चेहरा भी कवर रखें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। और अपनी ये इमरजेंसी किट आज ही तैयार कर लें। साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले दिन के कार्यक्रम की। कल चर्चा का विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ज्ञान विज्ञान में जानेंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर युवा साथियों से शिवानी श्रीवास्तव की बातचीत। इसके बाद संस्था में जानेंगे OECD के बारे में और लेंगे हीट वेव से जुड़ी जानकारी, धूप के लिए विशेष सावधानियां, और साथ ही होंगे मधुर गीत भी। इसी के साथ दोस्तों, आशा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह को दे इजाजत, नमस्कार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com, AYODHY

0: हमारे युवा दोस्त सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युव वाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप तक पहुंचा दिया है, मंगरू और साथियों की आवाज।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: एक पूर्वी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लन सिंह गहकरी और साथियों की आवाज में।
1: छल कल गगरिया

0: चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
2: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
1: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
2: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
1: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना, 8/6/2026 दिन सोमवार, समय 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय होगा कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार पनौता। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376-8040-90। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में

0: जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
0: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

और गुजर जाते हैं, कहानियां बनती हैं और यादें रह जाती हैं, पर उम्र कभी लौट कर नहीं आती, खोए हुए पल भी वापस नहीं आते हैं।

0: दोस्तों आपने उमर कैद में सुना मुकेश और लता को और उसके बाद मजबूर फिल्म में सुन रहे थे आप किशोर कुमार को। इसी के साथ हमारा आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचारों का बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः सह एकस्याः सभायाः अध्यक्षता कृता। भारतस्य आर्थिक परिवर्तनस्य दीर्घकालिक विकास प्राथमिकतानां विषयेषु च विस्तृताः विषयाः चर्चिताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने
1: समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है

0: लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत लीला बनर्जी और सखियों की।

0: सन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कमला देवी और सखियों की आवाज में एक गंगा गीत।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
4: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @

0: @gmail.com पर।
1: AYODHYAKASHVANI@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजी स्वर गांव की। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: पंचो जय हिंद।
1: मनोज भैया।
4: हाँ धीरे धीरे।
1: देखो भाई, अपने सभी तो अपने जो कार्यक्रम है किसान बाड़ी उमान आइन गया गए, और अगर देख जाए अपने सभी का तो तमाम ऐसा रोग भी याद खान पान की वजह से भी वही आते हैं, है ना?
4: बिल्कुल।
1: तो ऐसा में अपने सभी का विशेष अपने खान पान के रूप में विशेष ध्यान देने की जरूरत
4: है। बिल्कुल, यही लिए भैया हम पंचन के सेवा में मोटे अनाजों की खेती पर एक चर्चा लेके आए गए। पंचे यह पर जाने बूझे, आपस में समझे और ओकरी बाद आकलन करे कि काव अच्छा है काव बुरा, खाना के आधार पर यानी अपने सब खाओ मा खाए मा कौन सावधानी बरता जाए कि जौने से अपने सबका रोग दुख से दूरी बनी रहे और साथ ही साथ अपन जो पौष्टिकता है वो बनी रहे, पोषण अच्छा रहे।
1: बिल्कुल भैया। देखो भैया, जो मोटा अनाज है ना यानी मिलेट्स जो उनके सिरी अन्न भी कही जाते हैं, वो एक खेती आज के तारीख में बहुत लाभदायक है। कम पानी कम लागत और बंजर वाली जो जमीन है वही में भी समझो कि शानदार अपने सभी एकर पैदावार बढ़िया से ले सके थे।
4: एमा पंचो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, यह तरह का तमाम जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं वह आवत हैं। यकरे खेती बदे अपने सबका बहुत ज्यादा कोनो प्रयास की आवश्यकता ना है। यहाँ तक अगर कही जाए जैसे भैया बताएं कि एक खेती अपने सब बंजर जमीनों में कह सकी थे। खेत के तैयारी की अगर बात अपने सब ही करी तो खेत के तैयारी कोनो बहुत अच्छी बहुत ज्यादा वहाँ विशेषता ना है। एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से और साथ ही साथ बाद ओका भुरभुरी करे बदे चाहे हैरो प्रयोग करें या फिर कल्टीवेटर या रोटावेटर कौनो से ओके बवाई अपने सब कह सकी थे।
1: भैया देखो, जो अपन महीना चलते जून का है ना, जून के अंतिम सप्ताह से और जुलाई के पहले सप्ताह तक एक जो बुआई होते ना वो बढ़िया उत्तम मान जाते। अगर अपने सभी यह समय के बीच में जो ना बुआई करब तो अपन जो फसल है वो बढ़िया रहे।
4: बिल्कुल। अब बीज की मात्रा का अगर बात अपने सभी करी तो बाजरा बदे 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर रागी बदे 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त माना जाता है और इतना बुवाई के पे अपने सबका पर्याप्त उत्पादन मिले की संभावना बना है।
1: बिल्कुल भैया। खाद और उर्वरक की बात की जाए तो बुवाई के जो पहले 10-15 टन सड़ी खाद जो गोबर का हुए माटी में अच्छी तरह से खूब मिलाई के ओका अपने सभी अगर बुवाई की जाए तो अपन जो फसल है वो बढ़िया रहे।
4: बिल्कुल। और रासायनिक उर्वरक के बाद अगर अपने सभी करी तो ओकरे लिए हम तो यह कहा कि जैसे माटी के जांच के अनुसार अगर अपने सब खाद का प्रयोग करब तो बढ़िया रहे और अगर कहूं कुछ यार ऊंच नीच दिखाता है तो हमारा वैज्ञानिक भैया लोग जौन बतावत है संशुद्ध मात्रा जौन कुछ होत है ओकरे हिसाब से बवाई बदे अपने सब रासायनिक खाद का प्रयोग कर सके थे।
1: बिल्कुल भैया। और देखो भाई, अगर जमीन की बात कही जाए तो ये जो मोटा अनाज है वही के बदे जो ऊंचाई वाली जमीन होते है जहाँ पानी कम से कम लागे वही के लिए बहुत उपयुक्त मान जाए। काहे से अगर वह पानी लागे तो अपने फसल के जल जमाव से नुकसान भी पहुंचावत है और जो मोटा अनाज है ना भैया ये आवे वाले जो समय है वही में एक बहुत मांग रहे। यह नाते अपने सभी का यह जो मिलेट्स है श्री अन्न है मोटा अनाज है ज्वार बाजरा ये सब है यह खेती जो बा रागी है अपने सबका विशेष रूप से अब ध्यान दे के जरूरत है।
4: बिल्कुल
1: ना?
4: अगर अपने सब ध्यान दे तो तय है कि फायदा पाऊ अपन स्वास्थ्य बढ़िया रहे और स्वास्थ्य बढ़िया रहे के साथ ही एक बात और कि अगर कुछ विशेष जानकारी कोनो अपने फसल बदे मिल जात है तो हमें लागत है कि उ स्वास्थ्य का बढ़ावे के साथे साथे फसल के बढ़ोतरी में अपन आर्थिक दशा ऊंची बनावे में अपन महत्वपूर्ण योगदान निभाए। यही तरह से एक वक्त ही लेके भैया आएगा ही धान की उन्नत प्रजातियों एवं नर्सरी डालने की वैज्ञानिक विधि है एक बारे में बताओ था डॉक्टर श्याम वीर सिंह उनसे बातचीत करते हैं। प्रभाकर शुक्ला भैया तो आओ जानकारी के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: चलो
5: पंचो, आज अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर एस बी सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप सस्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में। डॉक्टर भैया सबसे पहले आपके आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत बाय।
6: धन्यवाद।
5: स्वागत करें के साथ ही हम अपने किसान पंचन का बतावत चली आज अपनी बातचीत के विषय है धान की उन्नत प्रजातियां एवं नर्सरी डालने की वैज्ञानिक

0: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर। हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ
2: पर हम तो सभी डाले हैं।

0: वैज्ञानिक विधि काहे से कि हमारे किसान पंच भैया आगे खरीफ मौसम में मुख्य फसल के तौर पर धान के रोपाई करत हैं, तो उनका कैसे कौनी बात के शुरुआती तौर पर ध्यान रखे हुआ है सारी बात उनका मालूम होक चाहिए ताकि कोनो मेर से हमारे किसान पंचन से चूक न हो पावे। हम आपसे यह सबसे पहले जानना चाह डॉक्टर भैया कि जैसे धान के फसल उनका बोवे का है या उपजावे का है तो उससे पहले नर्सरी डावे खुआत है, तो नर्सरी डारे के लिए हमारे किसान पंच जो माटी है यके कैसे का ध्यान रखें, कौन माटी का चुनाव करें?
1: हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि दोमट भूमि अगर आपके पास है तो सर्वोत्तम मानी जाती है और खेत आपका समतल होना चाहिए जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, साथ ही साथ अच्छी निकास की भी व्यवस्था हो कि ऐसी कंडीशन में स्थिति में जब ज़्यादा कहीं पानी हो जाए तो हमारा निकास भी वहाँ हो।
0: जी,
1: साथ साथ हम ये भी किसान भाइयों को बताना चाहेंगे भूमि का चुनाव करते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भूमि आपकी उपजाऊ हो।
0: अच्छा।
1: जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो।
0: जी।
1: हम उसको सरल भाषा में कहें कि ये कि किसान भाई जब अपने खेत में जैसे गोबर की खाद डालते हैं, सही गोबर की खाद, तो इस तरह वो जीवांश मात्रा को बढ़ाता है हमारे खेत में, तो जीवांश मात्रा की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए हमारे खेत में, और जिसे हम कहते हैं उर्वर भूमि, उर्वर हो, उर्वरता उसकी अच्छी हो। तो और साथ ही साथ उस खेत में जहाँ नर्सरी की तैयारी हम कर रहे हैं डालने के लिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार के उस खेत में कोई जो हम बीज से यह तैयार करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई खरपतवार ना हो।
0: जी,
1: ये किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ।
0: अच्छा, एक चीज और हम आपसे क्लियर की चाहिए थी डॉक्टर भैया, कईयों बार हमारे किसान पंच भैया ध्यान नहीं देते, जैसे कि पेड़ के बाग वगैरह है और वही के बगल वाले खेत में ही नर्सरी डाल दिए थे तो वह छाया जोन बाय वह स्थान पर पड़े थे, तो क्या ऐसी जगह पर नर्सरी डाले से बचे चाहिए?
1: बिल्कुल बचना चाहिए ऐसी जगह से जहां पर किसी पेड़ की छाया, किसी भी चीज की छाया अगर पड़ रही है तो वहां से थोड़ा हट करके हमें नर्सरी अपनी डालनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पौधे हमारे होते हैं वो अपने भोजन को स्वतः बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, और अगर किसी पेड़ की छाया या किसी अन्य चीज की छाया वहां पर पड़ रही है पौधों पर, तो इसका मतलब है कि वहां पर धूप नहीं पड़ पाएगी।
0: बिल्कुल,
1: धूप नहीं पड़ेगी तो पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में आपकी वो पौध जो है आपकी कमजोर रह जाएगी, पीली भी पड़ जाएगी आपकी। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम खेत का चुनाव करें तो वो पेड़ से हट करके करें कि वहाँ छायादार स्थान ना हो, ऐसी जगह का हम चुनाव करें नर्सरी डालने, अच्छी धूप मिलनी चाहिए जो है नर्सरी के लिए।
0: अब आगे बात करिए भैया कि जो हमारे खेत है वो का जिसे उर्वरता तो चाहवे करी माटी में, लेकिन कुछ जुताई निराई की तैयारी भी करे पड़त है,
1: बिल्कुल,
0: तो वही मां कोनी बात के ध्यान दिए पड़े।
1: हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जब हम नर्सरी के लिए बीज छैया तैयार करते हैं तो हमें सबसे पहले जुताई की आवश्यकता होती है, कि सबसे पहले हम एक बार जो है मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई कर देते हैं ताकि जितने भी खरपतवार वगैरह हैं वो नीचे दब जाएं।
0: जी।
1: और इसके बाद जो है हम उसमें दो बार कल्टीवेटर से जुताई करते हैं।
0: अच्छा।
1: ताकि भूमि वहाँ की जो भुरभुरी हो जाए, ढेले ना रहे वहाँ पर, जिसको कहते हैं ढेले जो होते बड़े बड़े वो ना रहे, तो भुरभुरी जब मिट्टी हो जाए तो इस तरह करके जो है किसान अपनी बीज सैया तैयार कर सकते हैं।
0: मतलब दो से तीन जुताई करने का?
1: बिल्कुल करना है आपको दो से तीन जुताई, इससे आपकी जो खरपतवार होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ जो है आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जो जो कि बीज के अंकुरण के लिए ज्यादा अच्छी होती
0: है। अब आगे बात की डॉक्टर भैया, देखो कोनो भी फसल हमें बोवे का है तो सबसे बड़ी चीज होता है कि जोन बिया है ये के सही चुनाव हुए, अच्छी किस्म को हुए, स्वस्थ बिया हुए, तबे वहाँ अच्छा जमाव हुए और के पौध जोन रहे वो अच्छी हुए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो जोन प्रजातियां हैं खास करके, कैसे उन्नत प्रजाति के चयन करें हमारे किसान, ये का सावधानी हमारे रखे हुए?
1: ज़्यादातर किसानों को ऐसा पाया गया है, देखा गया है कि स्थानीय जो है वो किस्मों को कई बार वो जानते भी नहीं है ये कौन सी किस्म है।
0: जी।
1: ऐसा चुनाव कर लेते हैं। हम आपको बताते चलें कि किस्मों का चुनाव आपकी पैदावार पर कम से कम 50% का फर्क डालती है,
0: तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा असर है।
1: बहुत बड़ा असर है,
0: क्योंकि इतना खर्चा किए के बाद, उतना समय लगाए के बाद अगर हमारी उपज आधी है
1: बिल्कुल,
0: तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए जो है हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्नत किस्मों का चुनाव करें और किसी अच्छे सोर्स से ही स्रोत से उसे जो है खरीद करें उसकी जो है, ताकि आपकी अच्छी फसल तैयार हो सके, अच्छी नर्सरी तैयार हो सके और उससे फिर आपकी फसल भी अच्छी तैयार हो सके। किसान भाई, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी किस्में जितनी भी होती हैं उसमें

0: तीन कैटेगरी मुख्य रूप से बनाई गई है, जिसमें अल्पकालिक और मध्यकालिक और दीर्घकालिक।
1: जी जी।
0: जिसमें अगर जो हम कहें कि अल्पकालिक फसलें जो होती हैं वो 100 से 110 दिन में और मैक्सिमम 115 दिन में वो पक करके तैयार हो जाती हैं, और इसके बाद जो है मध्यकालीन वाली लगभग 120 से 125 दिन में लगभग, और देर से पकने वाली जो होती है दीर्घकालिक होती है वो लगभग 130 से 35 से 45 दिन तक की फसलें जो होती
1: अच्छा,
0: है
1: अच्छा।
0: वो है। तो इसमें मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि कम अवध की जो हमारी धान की प्रजातियां हैं उसमें जैसे एनडीआर आपकी 94 भी है, आपकी एक एनडीआर हमारी 118 है, शुष्क सम्राट है, और ये आईआर 64 सब बन करके आती है जिसका नाम जो है सहभागी है। ये फसलें बड़ी उन्नत होती हैं और जहां पर ये कम अवध वाली किसान भाई खास करके जो आगे चल करके रबी सीजन में जो जैसे आपको सरसों बोनी है, मटर बोना है, उन किसानों के लिए ये फसलें ये किस्में बड़ा फायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि जल्दी खेत तैयार उधर खाली हो जाता है
1: जी, जी।
0: और किसान उधर अपना चूंकि जल्दी सितंबर के महीने में आप जो है आप मटर का और उधर उसकी सरसों की बुआई ताकि समय से आगे रबी सीजन की बुआई हो सके इन फसलों की, उसके लिए जो है कम दिनों की जो अल्प अवध की जिसमें कम अवध की हमारी जो प्रजातियां हैं उनका इस तरह चुनाव कर सकते हैं। और ये मध्यम अवध वाली जिसमें हमारी एनडीआर 2064 है, एनडीआर 2065 है और सरजू 52 है, और एनडीआर एक हमारी 359 करके 359 वैरायटी है, और साथ ही साथ इसमें एनडीआर 31/12-1 करके वैरायटी आती, बड़ी उन्नत किस्में हैं, इनकी बड़ी अच्छी उपज है।
1: अच्छा।
0: अगर हम लंबी अवध की बात करें तो उसमें हमारी एक एमटीयू 7029 करके आती है वैरायटी है, और जिसको हम स्वर्णा या लाल स्वर्णा के नाम से जानते हैं ज्यादातर किसान, और एक बीपीटी 5204 है जिसको हम सांभा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ हमारी उन्नत प्रजातियां हैं, अगर किसान भाई हमारी इन प्रजातियों की नर्सरी डाल करके अपने खेत में रोपित करें तो निश्चित तौर पर उन्हें बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो ये तो रही डॉक्टर भैया किस्म के बात, अब आगे बात करें कि कोनो भी खेते में हमें कितना बिया बोवे के बाय और कौनी मेर से चुनाव रखे के बाय यू के हमें ध्यान रखे के होते, तो हमें बिया की मात्रा कैसे रखे बताऊं?
0: ये आम तौर पर होता क्या है कि जैसे एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कहा जाता है कि इसका 20वां भाग खेत का,
1: अच्छा,
0: उसमें नर्सरी डाल दे, 20वां भाग कहें लगभग 500 वर्ग मीटर जगह में नर्सरी आपको डालनी होती है
1: जी।
0: और उस 500 वर्ग मीटर की नर्सरी आपकी एक हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है रोपाई के लिए। लेकिन किसान भाई ये 500 में हो सकता है कभी कुछ कम पड़ जाए, तो किसान भाई 700 से 800 वर्ग मीटर जगह में 20 हैया तैयार करके उसकी नर्सरी तैयार करें, और मैं विश्वास रखता हूं कि वो नर्सरी पूरी एक हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होगी। तो इस तरह करके किसान भाई अपना जो है खेत की जो जगह है वो चुनाव करके उसमें इतने क्षेत्रफल का चुनाव करके नर्सरी डाल करके एक हेक्टेयर खेत के लिए रोपाई के लिए वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: एक हेक्टेयर खेत में मतलब कई किलो बिया लिए के पड़े?
0: उस नर्सरी 30 से 40 किलोग्राम
1: अच्छा
0: बीज की हमें मात्रा की जरूरत होती है
1: जी।
0: 30 से 40 किलोग्राम मात्रा की बीज की मात्रा की नर्सरी तैयार करके एक हेक्टेयर खेत क्षेत्रफल के लिए रोपाई के लिए नर्सरी पर्याप्त हो जाती
1: है। अच्छा, डॉक्टर भैया जिसे नर्सरी डालने से पहले जो बिया है अगर ये कहे उपचार किए जाए तो सही रहे कि बिना उपचारित किए ही बुआई दिन कई दिन जाए तो ठीक रहे?
0: नहीं, किसान भाइयों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, हमें किसी भी फसल का, ये तो यहाँ चूंकि धान की बात हो रही है, किसी भी फसल की बीज की बुआई बिना उपचार किए हमें बोनी ही नहीं चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, उपचारित बीज ये मान के चलिए कि आप लगभग 50 से 60% आप रोग व्याधियों को दूर कर देते हैं।
1: बिल्कुल, बीज जनित रोग तो ना के बराबर लगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी धान की जहाँ पर बात आई, हमारी यहाँ पर धान के लिए आप देखेंगे कार्बिंडाजिम एक हमारी दवा आती है
1: जी,
0: 2 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है।
1: अच्छा।
0: और अगर ये भी नहीं है तो ट्राइकोडर्मा आप ले लें, आप ट्राइकोडर्मा आपका 10 ग्राम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है
1: जी।
0: इस तरह करके अगर किसान भाई हमारे बीज की
1: बीज उपचार
0: करके अगर जो वो अपनी नर्सरी तैयार करेंगी तो निश्चित पर रोग व्याधियां हमारी नर्सरी में बड़ी कम आएंगी।
1: अच्छा, जिसे कि बिया का चुनाव होएगा, बीज उपचार होएगा, अब रही खेते में बिया डालने के बाद, तो वह शायद कौनी बात का ध्यान देख जरूरत रहा था।
0: हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि नर्सरी जो है धान की जब डालते हैं तो बीज को अंकुरित करके डाला जाता है।
1: अच्छा।
0: हम आम तौर पर ऐसा करते हैं कि 12 घंटे तकरीबन हम जो है पानी में बीज को भिगोते हैं।
1: अच्छा।
0: और 12 घंटे के बाद जो है उसको निकाल करके अच्छे पानी में उसको धुल करके और जूट के बोरे में उसको हम 24 घंटे के लिए रूम

0: टेम्परेचर पर हम कहें
1: जी,
0: उसको हम रख देते हैं और 24 घंटे के बाद में जब हमारा आप बोरी खोलेंगे तो आप देखेंगे सारे बीज हमारे अंकुरित हो जाते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: यदि किसान लेट हो जाता है, कहीं कई बार ऐसा होता है कि 36 घंटे तक रख देते हैं, होता क्या है ऐसी कंडीशन में बीज की जड़ें ज्यादा निकल जाती हैं और वो आपस में वो
1: उलझ जाते हैं
0: तो जब खेत में आप डालने के लिए जाएंगे तो कई बीज एक साथ उलिपटे हुए पाए जाते हैं, तो वो उससे अच्छी नर्सरी तैयार नहीं हो पाती है।
1: बिल्कुल, जो अंकुरण है वो टूटने का डर रहा था,
0: बिल्कुल टूटने का डर रहता है, इसलिए हम 24 घंटे ही कहते हैं कि छोटा छोटा अंकुरण हो पाए ऐसे बीज को चुनाव करना चाहिए और उसे नर्सरी उसी की डालनी चाहिए।
1: तो नर्सरी के डावे में उर्वरक और सिंचाई के भी क्या व्यवस्था रखनी चाहिए?
0: हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि उर्वरक की जहाँ तक बात आई तो हम एक वर्ग मीटर जगह के लिए हम बताते हैं और फिर जितना भी वर्ग मीटर जगह
1: बढ़ता जाएगा उसी
0: हिसाब से वो अपना उर्वरक भी बढ़ाते जाएंगे। यूरिया का लगभग 22 से 23 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर और लगभग 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट आपका पास हो, इसको हम एक वर्ग मीटर के लिए पर्याप्त मानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसके बाद में जब नर्सरी आपकी थोड़ी बड़ी होने लगे, पीलापन कभी आने लगे, तो उसमें 50 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपका उसका ऊपर से टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं।
1: जी जी, आगे चलो हम बात करें कि हम कई बार खरपतवार और रोग भी आए जाते हैं खासकर नर्सरी के अंदर में या कोनो किरोवे लाग जाते हैं, तो इनसे बचाव के लिए कौनी बात का ध्यान रखें?
0: हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि नर्सरी की स्टेज में बहुत सारे कीड़ों का बहुत प्रकोप नहीं हो पाता, फिर भी अगर बाई दफे कहीं कीड़ों का ऐसा प्रकोप नजर आता है तो 2 ml क्लोरोपायरीफास 1 लीटर पानी में डाल करके उसका आप छिड़काव कर दें।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपसे उससे दूर हो जाएंगे।
1: रोपाई के लिए डॉक्टर भैया कितने दिन का नर्सरी उचित रहा था?
0: हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि नर्सरी हमें कम दिन की ही खेत में रोपाई करनी चाहिए और वो लगभग आपका 25 दिन की नर्सरी, 25 से 28 दिन की नर्सरी आपकी अगर जो है उसको खेत में हम रोपाई करें तो निश्चित तौर पर उसमें कल्ली ज्यादा निकलती है और उसकी हमें उपज भी ज्यादा मिलती है। ज्यादा अगर पुरानी हमारी नर्सरी हो जाती है ऐसी कंडीशन में फिर क्या है, हमारे कल्ली निकलने की उसकी क्षमता कम हो जाती है, तो खेत में एक हिल पर एक जगह पर जो पौधे लगाते हैं उसमें कल्लों की संख्या कम रह जाती है, परिणाम स्वरूप उसमें जो बाद में जो बाली निकलती है वो भी कम बाली निकलेंगी
1: जी,
0: तो उपज किसान के पास कम होगी।
1: बहुत अच्छी बात डॉक्टर एसबी सिंह भैया, आप धान की उन्नत प्रजाति, नर्सरी डावे के वैज्ञानिक विधि और रोपाई के जो समय है ये सब बताए दे हैं। आशा करी थी कि मेरे किसान पंच भैया अगर ध्यान रखी है आपकी बताई गई बात के तो निश्चित तौर पर उनके नर्सरी समय से खेते में पड़ जाए और उमा अच्छी जो बाव के जमाव हो जाए और तैयार भी हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो उनका रोपाई करे में कोई दिक्कत न रहे और समय से रोपाई हो जाए तो उनका उत्पादन लाभ भी मिले। इतनी अच्छी जानकारी दिए के लिए डॉक्टर एसबी सिंह भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जो

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: मनोज भैया।
7: हाँ भैया।
6: देखा भाई, जो अपन नर्सरी डारे को है ना, धान के उन्नत खेती और प्रजाति और नर्सरी जो डारे के बात की हो ना, कितना बढ़िया से वैज्ञानिक विद से डॉक्टर भैया या सभी सिंह भैया बताए ना।
7: बिल्कुल, धान की उन्नत प्रजातियां एवं नर्सरी डालने की विधि, एक बारे में जो अपने सब पंचो सुने, उम्मीद करित है ज्यादा से ज्यादा के लाभ अपने सब उठोबे, यही लिए कि इस समय चलते है जब अपने सब अपने धान के नर्सरी डाली। लेकिन वक्त का इशारा ये है कि यह पावन नगरी में कुछ पावन बात गीत के रूप में अगर हो जाए तो हमें लागत ज्यादा आनंद आएगी।
6: तो चला सुना जा छबी लाल पाल और साथी की आवाज में।

0: पंचो पंचो देखा छविलाल पाल और उनके साथी के आवाज में सुने अपने सभी को नहीं जीव गदगद होएगा, मजा आएगा। उम्मीद करा थे पंचो कि तोहरे सबका निकला हुए पंचो, लेकिन अपने हाथे में जोन आज अयोध्या मंडी का बाजार भाव है यो अपने सब जान लीन जाए, यही नाते कि कहूँ कोनो चूक न हुए पावे, यानी अपने सबका खरीदे माँ बेचे माँ कहूँ कोनो असावधानी का सामना न करे पड़े, ये लिए बाजार भाव जरूरी है।
1: बिल्कुल भैया, देखो चावल कामन के जो दाम रहा ना वो 3070 रुपया प्रति क्विंटल रहा, गेहूं दड़ा के भाव रहा 2585 रुपया, मक्का पियरकी रही 2400 और उड़द दाल काली रही 9200 रुपया प्रति क्विंटल और चना देसी रहा 6400 रुपया प्रति क्विंटल।
0: मसूरी के भाव पंचो आज मंडी में रहा 7130 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर दाल ई रही 10950 रुपया प्रति क्विंटल, उजर की आलू का भाव रहा 790 रुपया प्रति क्विंटल और ललकी प्याज रही 1270 रुपया प्रति क्विंटल।
1: टमाटर के भाव रहा 1550 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन के भाव रहा 7050 रुपया प्रति क्विंटल, तरोई रही 1190 रुपया प्रति क्विंटल और कोहड़ा के भाव रहा 1150 रुपया प्रति क्विंटल।
0: ये हिसाब से अदरक जोन रही मंडी में आज वो रही 8020 रुपया प्रति क्विंटल, लौकी 1580 रुपया प्रति क्विंटल, करेला का भाव रहा 1280 रुपया प्रति क्विंटल और सेब रहा 11830 रुपया प्रति क्विंटल। अनार आज मंडी में रहा पंचो 7600 रुपया प्रति क्विंटल।
1: गुड़ बट्टी रहा 5120 रुपया प्रति क्विंटल और चीनी के भाव रहा 4125 रुपया प्रति क्विंटल।
0: ये तो रहा पंचो बाजार भाव आज जो अयोध्या मंडी के अपने सब के अयोध्या मंडी में जो कुछ रहा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से जौन मौसम की जानकारी अपने सबका पिछले 24 घंटा मिली है वह अपने सब साझा कर ली जाए। पिछले 24 घंटा में जौन अधिकतम तापमान रहा वो रहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जौन की 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान जौन रहा 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा।
1: अधिकतम जो आता रही भैया वो 84% रही और न्यूनतम आता रही 52%।
0: हवा की गति जो रही 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक जो दिशा रही उत्तरी पश्चिमी रही।
1: आओ वाले जो पूर्वानुमान है कि आओ वाले 24 घंटा में हल्का बादल जो न छाए रहे और बारिश होने की संभावना नहीं है। हवा जो है सामान्य गति से पूर्वा चले के आसार है। औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रह के आसार है। लू से राहत के संभावना अभी नहीं दिखात है।
0: बिल्कुल भैया, पंचो बिहान अपने सब अपने यही पड़ाव में कृषि जगत कार्यक्रम माँ चर्चा की जाए, ढेर सारी जानकारी ली जाए, मन मन साइन हुए, लेकिन जो वक्त का इशारा है वही कहा था कि एक दूसरे से ली जाए विदा, तो फिर मिला जाए यही वादक साथ पंचो मनोज भैया
1: और धीरज भैया का देन मती
0: जय हिंद।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम आपको बताते चलें। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से आप सुनेंगे 8:15 से। पॉडकास्ट श्रृंखला हम सुनवाएंगे 7:30 से। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या होगा 9:30 से 10:30 तक और गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल आप सुन सकेंगे 9:15 से। और अब कल के कार्यक्रम विवरण। कल प्रातः 7:15 से बताया जाएगा दिन भर के कार्यक्रमों का विवरण। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश सुनवाया जाएगा 7:30 से। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:15 से। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में प्रातः 8:30 से प्रसारित किया जाएगा आज की बात। विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। साथ ही सुनेंगे फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी और समाचार पत्रों से। व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आपके संदेश आपके गीत सुना जा सकता है 9:00 से।

बातें आसपास की हम सुनवाएंगे। 9:30 से विषय होगा लक्ष्मण किला सहस्त्रधारा अयोध्या। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल प्रसारित किया जाएगा कल 11:55 से। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग सुन सकेंगे 12:30 से। सचिव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या कल दोपहर 1 से प्रसारित किया जाएगा। फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कुछ तुमने कहा सुन सकेंगे 1:30 से। गीतांजलि कार्यक्रम सुना जा सकता है दोपहर 2 से। कल दोपहर 2:30 से बाल जगत में हम सुनवाएंगे चर्चा, विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और बच्चे बने पर्यावरण प्रहरी। एक अन्न की कहानी, धरती माँ के श्रृंगार से लेकर हमारी थाली तक का सफर विषय पर वार्ता सुनवाई जाएगी। वार्ताकार होंगी दीपिका शुक्ला। रोचक जानकारी में भारत के समुद्र तटीय राज्य, प्रेरक व्यक्तित्व में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुमताज नगर ग्राम में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों से बातचीत आकाशवाणी के 90 साल सुनाया जाएगा। कलयुग वाली कार्यक्रम में शाम 5 से सुना जा सकता है चर्चा, विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ज्ञान विज्ञान में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग संस्था में OECD हीट वे में यूथ के लिए विशेष सावधानियां और आकाशवाणी के 90 पर युवा साथियों से शिवानी श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाई जाएगी। लोक संगीत कल शाम 5:30 से, शाम सुहानी 6:10 से और गूंजे स्वर गांव के 6:30 से सुनवाए जाएंगे। कल कृषि जगत में 6:45 से सुना जा सकता है चर्चा, विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री गणेश शंकर यादव जी बताएंगे कृषकों हेतु KCC और फसल बीमा योजनाओं के बारे में। शेर और गीत आप सुनेंगे कल रात 8:15 से, महफिल गजल 9:15 से और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या प्रसारित किया जाएगा रात 9:30 से 10:30 तक। तो श्रोताओं, ये थे कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण और अब आपको लिए चलते हैं अपने लखनऊ केंद्र, सुनते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा

0: सभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी, स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
4: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले

0: माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
1: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
1: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
3: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
1: भगत जी राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
2: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरढ़ी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आने वाला समय में जो हम का बचा खुचा है आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
1: सरपंच जी जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक के स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
2: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास हमारे गांव में और जंगल है पहाड़ है फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोकर सभा किए बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है मतलब कचरा के इकट्ठा करना है कहीं नहीं फेंकना है और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
2: मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
2: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोकर सभा जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए लगन किए तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
2: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए से और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी आपने उनको हल किया?
2: सर बहुत सारा चुनौती है जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं 2.5 मीटर का 2 मीटर का 1 मीटर का उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए अभी वाला जो पर से हम लोग बर्तन वर्तन धोते हैं नहाते धोते हैं उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है

0: जो घटने के वजह बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था। अच्छा। जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया। माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे। क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है आने वाला पीढ़ी के लिए। हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है। मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
0: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय। हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था। उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए। उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
0: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे।
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
0: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कुछ प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए, सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहे हैं
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
1: यही प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ, इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर, हमारे पास बहुत सारे समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम, सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इस मिनट उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, इसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है।

0: मैं इस्मीनान से उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूं। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूं।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहां पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहां प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन काम है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घरे में बैठता हूँ और

0: इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने मिल रहा है, खासतौर पर जब गाँव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर, उसके लिए अभी हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
0: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
1: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
0: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
1: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
0: जी,
1: चाहे जिससे काम महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
0: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
1: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं थे उसको मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को, आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया, इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
0: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
1: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है, जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं।
0: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
1: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा, उनको और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
0: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। मेहमान थे रामजी भगत। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए अब चलते हैं अपने मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
5: जब दिन भर की कड़ी धूप के बाद लोग रातों को छतें धोते थे और वहां गद्दे बिछाकर खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में सोने का आनंद लिया करते थे, लेकिन अब वो दिन हवा हुए, क्योंकि हवा तो गर्म हो गई है ना, पंखे और कूलर के बावजूद अब लोग सो नहीं पा रहे हैं, शरीर को आराम नहीं मिल रहा है, सुबह उठते ही थकान महसूस हो रही है, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस की तकलीफ वाले मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल भारत में इस बरस गर्मी

पहले से कहीं ज्यादा लंबी, उमस भरी और खतरनाक होती चली जा रही है। Why India's heat waves feel more brutal than before? क्लाइमेट ट्रेंड्स ने ये रिपोर्ट जारी की है जो भारत के एक खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि एक ऐसा दमघोटू जाल गर्मियां बुनती चली जा रही हैं जिससे निकलने के रास्ते बंद हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक घर के अंदर का तापमान अगर लगातार 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो दिल, दिमाग, नींद और शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार रात में गर्मी दिन से ज्यादा खतरनाक होती है। जब रात में तापमान कम नहीं होता तो शरीर को खुद को ठंडा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों, मजदूरों और बीमार लोगों पर पड़ता है। साल 2010 से 2014 के बीच रात के औसत न्यूनतम तापमान में हर दशक में 0.21 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 36 में से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रातें लगातार गर्म हो रही हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये बढ़ोतरी कहीं ज्यादा तेज हो रही है। इसलिए अब लोग दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हीट स्ट्रेस झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत का कोर हीट वेव जोन सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है जो अब पहले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो चुका है। इसमें शामिल हैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। लू की आवृत्ति और अवधि इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक सन 1961 से अब तक लू की आवृत्ति हर 10 सालों में 0.1 दिन बढ़ी है। इस तरह से लू का प्रकोप अब भयानक होता चला जा रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी का जो असर है वो पड़ रहा है खेती पर। बिजली की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। मजदूरों और काम करने वालों की काम करने की क्षमता कम हो रही है। अस्पतालों पर मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पाकिस्तान के सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म और उत्तर पश्चिमी हवाएं देश के मध्य हिस्से में पहुंच रही हैं। इन हवाओं ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य भारत को भट्टी में बदल दिया है। ऊपर से शहरों में बढ़ता कंक्रीट, बढ़ती आर्द्रता और मिट्टी से गायब होती नमी, इन सब ने गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। 2015 से 2025 तक के 11 साल दुनिया के सबसे गर्म साल रहे हैं, ये बात बताई है विश्व मौसम संगठन ने। विशेषज्ञों के मुताबिक जब हवा में उमस ज्यादा होती है तो पसीना जल्दी नहीं सूखता और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ऐसे में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी भी 50 डिग्री जैसी महसूस होती है। इस तबाही को बढ़ाने में हमारे आधुनिक शहर अपना योगदान कर रहे हैं। भारत के शहर अब अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं। दिन के समय डामर की सड़कें, कंक्रीट की ऊंची इमारतें और पेड़ों की घटती संख्या सूरज की पूरी गर्मी को सोख लेती है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि भारत के कई शहरों का तापमान ग्रामीण इलाकों की तुलना में 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो रहा है। इससे समझ में आता है कि कैसे मौसम का संतुलन लगातार बिगड़ता चला जा रहा है और जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। आठ जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। महासागर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे कौतूहल का केंद्र तो है ही, लेकिन ये धरती के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों में पेड़ पौधे, कई प्रजाति के जीव और ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक ये धरती के तापमान को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर दिवस मनाने का मकसद ये है कि हम महासागरों के महत्व को जानें। महासागरों से कई तरह की दवाएं भी हमें मिलती हैं। महासागर धरती के अस्तित्व को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। दुनिया के महासागर धरती के 70% हिस्से को ढांके हुए हैं। हमारे मौसम, ऑक्सीजन और अरबों लोगों के जीवन का आधार हैं ये महासागर। विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में

रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे मान्यता दी। तब से हर साल ये दिन मनाया जाता है। शुरू में इसका विषय था हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी। वैश्विक स्तर पर 30x30 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है महासागरों को लेकर। 30x30 के लक्ष्य का मतलब है पृथ्वी की 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि सच्चाई ये है कि आज केवल 8% महासागर ही संरक्षित हैं। जाहिर है इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। समंदर सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नहीं है बल्कि वो धरती के तापमान को नियंत्रित करते हैं, 50% ऑक्सीजन देते हैं और दुनिया के हर तीसरे इंसान की रोजी रोटी इनके जरिए चलती है, चाहे मछली पालन हो, टूरिज्म हो या समुद्री कारोबार। लेकिन जरा सोचिए कि हर साल 80 टन प्लास्टिक समंदर में जा रहा है, हद से ज्यादा मछलियां मारी जा रही हैं और एसिड लेवल बढ़ने की वजह से कोरल रीफ तबाह हो रहे हैं, मूंगे के पहाड़ खत्म हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कई समुद्री प्रजातियां हमारी आंखों के सामने गायब हो जाएंगी। भारत ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है जो समुद्र और नदी दोनों में डॉल्फिनों को बचाने के लिए केंद्रित है। इसके अलावा भारत का डीप ओशन मिशन हर साल 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना है, जिसमें गहरे समुद्र में शोध, खनन और जलवायु संबंधी अध्ययन शामिल हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महासागरों का कितना महत्व है हमारे जीवन में।

साल 2026 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस साल 23वां फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला जा रहा है और संयुक्त मेजबानी 16 शहर कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर इसमें शामिल हैं, मेक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहर। ये टूर्नामेंट 3 देशों द्वारा आयोजित होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप बनने जा रहा है और इसमें पहले की 32 टीमों की तुलना में 48 टीमें शामिल होंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर आपको बता दें कौन से हैं जहां पर ये फुटबॉल मैच खेले जाएंगे। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, मेटलाइफ स्टेडियम जो फाइनल का आयोजन स्थल भी है, लॉस एंजलिस का सोफी स्टेडियम, डलास का AT&T स्टेडियम, अटलांटा का मर्सिडीज बेंज स्टेडियम, सिएटल का ल्यूमेन फील्ड, ह्यूस्टन का NRG स्टेडियम, सेंट फ्रांसिस्को बे एरिया का स्टेडियम, फिर बोस्टन, मायामी, फिलाडेल्फिया और कंसास सिटी के स्टेडियम इसमें शामिल हैं। मेक्सिको के 3 शहर हैं, मेक्सिको सिटी का स्टेडियम, मोंटेरे का स्टेडियम और ग्वाडालाजारा का स्टेडियम। कनाडा के 2 शहर हैं, टोरंटो का उद्घाटन होगा 11 जून 2026 को मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एजटेका स्टेडियम में और फाइनल मुकाबला होगा 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क या कहें न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में। IPL खत्म हो चुकी है और अब फुटबॉल के इस महाकुंभ का बुखार सबको अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार फीफा विश्व कप के लीग स्टेज के सभी मुकाबले रात 9:30 बजे शुरू होंगे और अगली सुबह 9:30 बजे तक अलग अलग वक्तों पर खेले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल के दीवानों की रातों की नींद तो गई समझिए। 11 तारीख को इस टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा लेकिन भारत के दर्शकों के लिए पहला मैच 12 जून को आधी रात के बाद 12:30 बजे शुरू होगा। समझ गए ना आप? फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से शुरू होगा। दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप माना जा रहा है। मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। चलिए उन 5 खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में दागे हैं सबसे ज्यादा गोल। मिरोस्लाव क्लोस, जर्मनी के खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोस फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 2014 से लेकर 2022 के बीच 4 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है और इस दौरान 24 मुकाबलों में उनके दागे गए गोलों की तादाद है 16। 2002 से 2006 में क्लोस ने 5

5 गोल दागे थे जबकि साल 2010 में 4। अपने करियर के आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 गोल किए थे। और अब रोनाल्डो की बात। ब्राजील के लिए खेलने वाले रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में हैं सेकंड नंबर पर। द फिनोमेनन के नाम से मशहूर रोनाल्डो ने 1994 से लेकर 2006 के बीच कुल 15 गोल किए हैं 19 मुकाबलों में। 2002 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने 8 गोल दागे थे। ब्राजील को चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी। जस्टिन फोंटेन फ्रांस के खिलाड़ी 1958 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था जिसे तोड़ना मुश्किल नजर आता है। जस्टिन ने इस वर्ल्ड कप में अकेले 13 गोल किए थे। सबसे बड़ी बात यह कि ये 13 गोल केवल 6 मैचों में किए थे। ये रिकॉर्ड आज तक कोई फुटबॉलर तोड़ नहीं पाया है। लियोनेल मेसी साल 2022 में अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में हैं 4th नंबर पर। मेसी ने 2006 से 2022 के बीच फीफा वर्ल्ड कप में कुल 13 गोल किए हैं। कतर में खेले गए आखिरी वर्ल्ड कप में मेसी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और 7 गोल करके अर्जेंटीना को खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5वें नंबर पर हैं किलियन एम्बापे। कतर में हुए आखिरी वर्ल्ड कप में भले ही अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी लेकिन एम्बापे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। फाइनल में एम्बापे ने अपने विरोधियों को भी अपना दीवाना बना दिया था। कुल 14 मुकाबलों में 12 गोल उन्होंने किए हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में 8 गोल किए थे और गोल्डन बूट अपने नाम किया था। ये है एम्बापे का कमाल। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप का जो फुटबॉल का बुखार है अब वो सबको अपनी चपेट में लेगा और सब फुटबॉल के दीवाने बनते चले जाएंगे। हमारी भी नजर रहेगी और जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको ये बताते रहेंगे कि किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है और कौन कौन सी टीमें ऐसी हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। दोस्तों ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का पहला भाग। वाचिका है ममता सिंह।
1: शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भर कर कहा, बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। उसका काम करने वाला कोई तो चाहिए, एक हल तोड़ दो तो गुजारा ना होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का ये कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देख रेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा भला दूसरा कौन है। जाने दो, रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वो हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है, मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से देख भी न सकेगा। बहू तुम किसी बात को सोचो मत।

0: बिरजू गया तो मैं तो अभी बैठा हूँ ना।
1: राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहनें नैहर की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगीं। शिवदास को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते। भरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। अब क्रियाकर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा,
0: ये कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजूरी करो और मैं मालकिन मर बैठूं? काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बहलता रहेगा, बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ नहीं होगा।
1: शिवदास ने समझाया, बेटा देव गति से तो किसी का बस नहीं, रोने धोने से हलाकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 200 काम है, कोई साधु संत आ जाए तो पाहुना ही आ पहुंचे, उनकी सेवा सत्कार के लिए किसी को तो घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारे ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वो निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, ये देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वो कभी ना आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था, फिर उसे बंद कर ये ताली अपनी कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दराजों से भीतर झांकती थी पर अंधेरे में कुछ न दिखाई देता था। सारे घर के लिए वो कोठरी कोई तिलिस्म का रहस्य था जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थीं। आज राम प्यारी को ये रहस्य खोल कर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडारा खोलते न देख ले, नहीं तो सोचेगा बेजरूरत इसने भला क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ इसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थीं। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन भरे हुए थे जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगने पर दिए जाते थे। एक आले पर माल गुजारी की रसीदे और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से यहाँ विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वो उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर सदर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसी झुनिया खड़ी है और 1 रुपया मांग रही है। राम प्यारे ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रिया कर्म में सब खर्च हो गया है। झुनिया चकरा गई, चौधरी के घर में इस

में एक रुपया भी नहीं है? ये विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, वो सब कुछ क्रियाकर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने ये बहाना किया होता तो उसे अचरज न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर ही शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही की तो बात है, उसने जानकी को शेर भर दूध दे दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगने पर दे देती थी। कृपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गढ़े में पढ़कर आई हूँ। नहीं, तुम जानती हो मेरी तो आदत ही नहीं है मांगने जांचने की। बाकी का एक रुपया देना है, प्यादा द्वार पर खड़ा बगचक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह ये विपत्ति टले। मैं आज के आठवें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन है जहां मैं मांगने जाऊं? प्यारी टस से मस्न हुई। उसके जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बिनना अपाड़ लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर दोनों बहनों में झाँव झाँव होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो दो में से एक उठती और मोटे मोटे टिक्कर लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातिब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है, अब वो घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दे। अब क्या इनसे इतना भी ना होगा? द्वार ऐसा चिकना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए। ये नहीं कि उपकाई आने लगे, अभी कह दूं तो तुना उठेंगे। अच्छा, कि मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में झांका, दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता है कि चार घड़ा पानी नांद में डाल दे। मजूर रखा है, वो भी तीन कौड़ी का, खाने को डेढ़ सेर, काम करते नानी मरती है नानी। आज आते हैं तो पूछती हूँ, नांद में आखिर पानी क्यों नहीं बदला? रहना हो रहे, जाना हो जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे न रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। शिवदास ने पुकारा, अरे बहू, पानी क्या होगा, इसमें तो पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो, कोस भर दूर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए, किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठीक काम करने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है, न दूसरों को विश्राम लेने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीजें मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी सदस्य दिखाई देते हैं। अब वो पहले किसी दशा नहीं है कि कोई चीथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वो प्यारी है, फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता, मेहनत से सभी जी चुराते हैं, फिर भी ये सब मानते हैं कि प्यारी न हो तो घर का काम न चले। और तो और, दोनों बहनों में भी उतना अपनापन नहीं है। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया,
हाथ में रुपए।

0: रहने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी, बोली, तेरे हाथ से काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना? प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ के रखती हूँ तो तेरे लिए ही, कि मेरा कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूट पड़ा है। दुलारी बोली, तुम न खाओ पहनो लेकिन जस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है? तुम्हारा हिसाब किताब मैं नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। हाँ, प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उद्दंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ कड़े। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते थे और वो गरीब सबकी धौंस हंस कर सहती थी। स्वामिनी का तो ये धर्म ही है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का भी असर ना होता। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों में और भी स्वस्थ होती थी। वो गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है बेचारी। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है बेचारी। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई।
1: ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी का पहला भाग। वाचिका थी ममता सिंह, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। हम आपको बता दें, इस कहानी का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सुनो कहानी में। सुनो कहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
2: हेलो
3: सुनो टेलीफोन नंबर।
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार से। अब मैं हूं आपका मेजबान गिरिजेश निषाद और आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता की जिसने अपने अभिनय से तो करोड़ों दिल जीते ही अपने मानवीय गुणों और समाज सेवा से भी लोगों के दिल में अमिट स्थान बनाया। जी हाँ, नाम है सुनील दत्त। किसी ने ठीक ही कहा दोस्तों, वो लोग कभी मरते नहीं दुनिया की निगाहों में, जो अपनी पहचान बना जाते हैं राहों में। 6 जून यानी आज ही के दिन 1929 को पंजाब के झेलम जिले के खुदी गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, जन्मे सुनील दत्त का। वास्तविक नाम था बल

राज दत्त। देश के विभाजन का दर्द उन्होंने बहुत करीब से देखा। परिवार भारत आ गया और संघर्षों के बीच जीवन की नई शुरुआत हुई। आइए सुनते हैं अब एक गीत उन्हीं की फिल्म वक्त से। आवाज है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

दोस्तों, मुंबई में पढ़ाई के दौरान उन्होंने बस डिपो में नौकरी की और बाद में रेडियो सिलोन में उद्घोषक बने। उनकी प्रभावशाली आवाज ने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, लेकिन 1957 में आई मदर इंडिया ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने बिरजू का किरदार निभाया। फिल्म की शूटिंग के दौरान आग लगने की एक घटना में उन्होंने अभिनेत्री नरगिस की जान बचाई। यही घटना दोनों को करीब ले आई और बाद में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, मोहब्बत वो है जो किसी की जान बचा जाए। आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म खानदान का, जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार।

छह दोस्तों 1960 और 1970 के दशक में सुनील दत्त ने अनेक सफल फिल्मों में काम किया। वो प्रमुख फिल्में थी मुझे जीने दो, वक्त, मिलन, पड़ोसन, रेशमा और शेरा और हीरा। फिल्म पड़ोसन में भोला के उनके किरदार को आज भी दर्शक याद करते हैं। उनकी सहज अभिनय शैली ने उन्हें आम दर्शकों का प्रिय अभिनेता बना दिया। दोस्तों सुनील दत्त केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि सफल निर्माता और निर्देशक भी थे। 1971 में उन्होंने रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की महत्वपूर्ण फिल्मों में गिनी जाती है। उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी के माध्यम से लॉन्च किया जो काफी सफल रही। आइए सुनते हैं फिल्म रॉकी का ही गीत। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: फिल्म गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: सुनैन आई हॉस्पिटल नियावा फैजाबाद अयोध्या द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू सुनना ना भूलें, कल रविवार रात 8:15 से।
0: एक बार फिर स्वागत है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम एक ही कलाकार से में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त के बारे में। दोस्तों, सुनील दत्त का व्यक्तित्व फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ा था। 1980 के दशक में उन्होंने शांति और सद्भावना के लिए कई पदयात्राएं की। वे बाद में राजनीति में आए और सांसद बने। भारत सरकार में उन्होंने युवा एवं खेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनकी पहचान एक संवेदनशील और जनप्रिय नेता के रूप में रही। बेहतर होगा कुछ इस तरह से कहना, इंसान वही है जो इंसान के काम आए, वरना दौलत और शोहरत तो आते जाते साए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म रेशमा और शेरा का ये गाना।

0: दोस्तों सुनील दत्त को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभिनय और समाज सेवा दोनों क्षेत्रों में उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। 25 मई 2005 को सुनील दत्त इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनके विचार और उनका मानवीय व्यक्तित्व आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म मिलन का ये गाना, जिसे आवाज दे रहे हैं मुकेश।
1: मुबारक हो सबको समाये सुहाना,

संघर्षों से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना और फिर समाज की सेवा में जीवन समर्पित कर देना, यही थी सुनील दत्त की असली पहचान। ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत इस शेर के साथ, नाम ऐसा हो कि सदियों तक उजाला कर सके, नाम ऐसा हो कि सदियों तक उजाला कर सके, जिंदगी ऐसी हो जो औरों का सहारा बन सके। फिर मिलेंगे एक और सुनहरे सितारे की कहानी के साथ। फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं फिल्म गुमराह का ये गाना, जिसे आवाज दे रहे हैं महेंद्र कपूर।

0: कपूर की गए फिल्म गुमराह के इसी गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से अब समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं और अब आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र, सुनते हैं समाचारों का बुलेटिन, समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गाँव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों

0: और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु

0: और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी।

0: जगजीत सिंह की गई इस गजल के साथ ही हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आकाशवाणी अयोध्या के इस विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका अपना दोस्त गिरिजेश निषाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जिंदगी कभी धूप तो कभी छांव है, कभी खुशियों की बरसात तो कभी चुनौतियों का तूफान है, लेकिन जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है वही जीवन का असली खिलाड़ी कहलाता है। और हमारे एक श्रोता अपनी खुश मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, तो इनसे बातें कर लेते हैं जो इस समय लाइन पर हैं। हेलो
3: हेलो, हवाओं का साथ है, खुशियों की बहार, तारों के चिमचिमाहट, जुगनुओं की उड़ान है, लग गई हेलो अध्ययन कॉल, आ रही रेडियो से आपके साथ मेरी भी आवाज है। नमस्ते सर
0: जी। नमस्कार।

0: और हम आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: अनु पांडे गोंडा से।
0: जी, आपकी आवाज़ जानी पहचानी हम लोगों के लिए तो है ही, हमारे बहुत सारे श्रोता जो लगातार सुनते रहते हैं कार्यक्रमों को, वो भी आपकी ही आवाज़ से परिचित हैं। और हमने जैसा बताया अनु जी आपके बारे में कि आप एक खुश मिजाज इंसान हैं, तो अपनी खुश मिजाजी के बारे में कुछ बताइए कि लोग खुश कैसे रहें।
1: खुश रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो, बस हंसते रहो, बस हंसो और हंसाओ सबको, खुश रहो, मस्त रहो।
0: बिल्कुल, हम भी चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए आप अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, और इस तरह से आप खुश रहेंगे, लोगों के बीच खुशियां बांटते रहेंगे, है ना?
1: हाँ, और हम जितनी खुशियाँ देंगे बदले में कई गुना ज्यादा हमको मिलेगी।
0: बिल्कुल, जो हम देते हैं वही वापस हमको मिलता है।
1: हाँ
0: अनु जी, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना सर मुझको सुनना है कंपनी मूवी का, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो,
0: अल्ताफ रजा की आवाज में।
1: हाँ
0: गाना तो आपने कुछ विशेष चुना है जो अक्सर हम समझते कभी लोगों का ध्यान इस गाने पर जाता नहीं है।
1: हाँ, एक गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने देखा अभी काफी दिनों से बजा भी नहीं था, तो इसे आज ही गाना सुनेंगे।
0: अच्छा रहेगा कि कुछ नया बच जाएगा, है ना?
1: हाँ
0: चलिए सुनिए अपनी पसंद का गाना और हमारे सुनने वाले भी सभी सुने, साथ ही अपने दोस्तों को हम ये भी बता दें कि एक कॉल हमारे पास आई थी त्रिपुरा से विश्वजीत जी का, दुर्भाग्य से वो कॉल कट गई और आप सभी का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, फोन लगाते रहिए।
1: बाय
0: बाय।

0: जी दोस्तों, हमें भी आप सभी लोगों से बहुत प्यार है। आपकी कॉल आती है तो हमें बड़ी खुशी होती है। और हमारे देखिए एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: क्या कहते, पहली बार लगा है मेरा
0: जी। आपकी पहली कॉल लगी आज, पहली बार?
1: क्या कहते हैं, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा,
1: मैंने ये मोबाइल में, मैं अभी तक इंतजार करती रही किसी से, इसमें नंबर सेव कराऊं मोबाइल में।
0: अच्छा,
1: अभी 10 दिन पहले मैंने सेव कराया इसको।
0: जी, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए।
1: जी,
0: अपना नाम बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी, मैं विनीता बोल रही हूँ।
0: जी विनीता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप रेडियो कब से सुन रही हैं?
1: 1993 से।
0: अच्छा, जब से शुरुआत हुई,
1: जिस दिन आकाशवाणी फैजाबाद शुरू हुआ उसी दिन मेरे पापा ट्रांजिस्टर लेके आए।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हमें लगता है कि आपको, आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी।
1: जी नहीं, अब पापा तो नहीं है।
0: जी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर पापा लेकर आए तो आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी।
1: हाँ, मैं दरअसल हॉस्पिटल से जुड़ी रही बचपन से।
0: जी,
1: तो वहीं पर लेके आए थे, क्या कहते, गाना सुनने के लिए। पापा ऑफिस चले जाते थे, दिन में अकेली रहती थी मैं।
0: जी,
1: तो मेरा रेडियो जो है, हम राज है, हम साथी है, हम सफर है, समझ लीजिए। इसी से दिन होती है, इसी से रात होती है मेरी।
0: बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप देख भी नहीं पाती हैं, तो रेडियो तो आपका बहुत बड़ा सहारा है।
1: काम करती रहती हूँ, ये बचता रहता है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है।
0: जी,
1: और अपने दुख से दूर भी रहती हूँ थोड़ा।
0: विनीता जी, आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: सर, मैंने कागज के फूल है मूवी का नाम, और गाना है वक्त ने किया क्या हसीन सितम।
0: बिल्कुल, ये गीता दत्त की आवाज में गाना है।
1: हाँ जी, और गुरु दत्त जी ने बनाई है पिक्चर।
0: जी, हमें लगता है कि आप पुरानी फिल्मों की शौकीन रही होंगी और पुराने गानों को सुनना पसंद करती हैं।
1: तो हाँ, मैं पुराने ज्यादा पसंद करती नहीं, नए भी करती हूँ, कुछ नए भी अच्छे हैं गाने।
0: जी,
1: लेकिन मुझे पुराने ज्यादा पसंद है, और कुछ जिंदगी भी ऐसी उसी से गुजरी हुई है बचपन से, तो थोड़ा वैसे ही गाने अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे गाने आपको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई तो करते हैं, या कभी कभी आपके अतीत की याद भी दिलाते हैं। तो
1: हाँ जी,
0: विनीता जी,
1: मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा नंबर लगेगा, विनीता से बात करेंगे।
0: नहीं, यकीन कर लीजिए, अब आपकी कॉल लग चुकी है, आपकी बात भी हो रही है, और आपकी पसंद का गाना भी पहुंच चुका है। फिर फोन करिएगा, फिर बातें करेंगे। धन्यवाद।
1: ओके,
0: जी धन्यवाद।

0: गमों की धूप में भी मुस्कुराना सीख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी अगर किताब है तो उसे पढ़ना भी सीख लीजिए। और हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। बहुत दूर से इन्होंने कॉल किया है। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मेरा नाम सुमन मोहरी है, त्रिपुरा अगरतला से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी, स्वागत है सुमन जी, आपने बहुत दूर से कॉल किया है। और
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपको ये भी बता दें कि पहली कॉल जो हमारे पास आई थी त्रिपुरा से ही विश्वजीत जी की, दुर्भाग्य से उनकी कॉल कट गई, हमें बड़ा कष्ट हुआ। खैर, तो सुमन जी बताइए क्या करते हैं वहाँ पे आप?
1: सर मैं रबर का खेती करता हूँ, जो रबर का चीजें जो बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए घर का ट्यूब वगैरह और रबर का जितना भी सामान है, वो हम लोग इधर जो पैर उगाते हैं उसको मैं देखभाल करता हूँ और रेडियो सुनता हूँ आपका, जितना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो
1: आपसे बात भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी सुमन जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ इस समय मौसम कैसा है?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, अभी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है।
0: बारिश हो रहा है,
1: ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मौसम जो है बारिश के मौसम आने वाले है, एक दो महीने में शायद बहुत ज्यादा हो जाए।
0: अच्छा, आपके यहाँ हरियाली तो खूब होगी इस समय भी?
1: जी जी
0: हरियाली तो होगी।
1: जी बिल्कुल सर, नोटिस में जो है हरियाली ज्यादा है इधर।
0: और पर्यटक भी काफी जा रहे होंगे इस समय? पर्यटक जो वहाँ यात्रीगण जाते हैं वहाँ आपके क्षेत्र में पर्यटन करने?
1: हाँ पर्यटन
0: जी।
1: हाँ सर, बहुत लोग आते हैं सर इधर नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए। और बहुत खूबसूरत है इधर,
0: बिल्कुल
1: आएगा।
0: आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके त्रिपुरा में बौद्धिस्ट स्थल भी काफी हैं शायद?
1: जी जी बिल्कुल
0: है ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सर।
0: और चलिए सुमन जी, अच्छा लगा, लेकिन आपकी बात बहुत क्लियर नहीं आ पा रही, कुछ रुकावट सी महसूस हो रही है।
1: तो नेटवर्क इशू है हमारे इधर।
0: जी जी जी जी,
1: आपको शायद बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही,
0: थोड़ा कट के आ रही है। गाना कौन सा सुनवा दें?
1: सर सुने फिल्म का गाना है, और गाने का बोले ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, किशोर जी का गाया
0: हुआ, किशोर कुमार, किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में। जी
1: जी जी,
0: चलिए आपका आपकी पसंद का गीत हमने पहुंचा दिया है। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर फोन करिएगा।
1: ये गाना सारे जो रेडियो होता है वो उनको डेडिकेट करेगा।
0: जी
1: आप भी सुनेंगे साथ हमारे साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया इसके लिए आपको, और आप भी सुनिए इस गीत को। जी धन्यवाद।

0: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और इसके लिए आप डायल कर सकते हैं 73-76-80-40-90। फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर है, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर, चांदनी पांडे बोल रही
0: हूँ गोड्डा से। जी चांदनी जी, स्वागत है आपका हमारे आज की कार्यक्रम में। और कार्यक्रम
1: आप कैसे हैं?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। कार्यक्रम आपने कौन कौन सा सुना आज?
1: हमने पूरा प्रोग्राम सुना था, जितना किया था शाम सोहानी और एक ही कलाकार से।
0: अच्छा,
1: पूरा प्रोग्राम सुना था।
0: कैसा लगा ये आप बताइए?
1: अच्छा लगा सर, सुन के एक ही कलाकार अच्छा लगा जो आपने जानकारी दी। और उसने गाने भी अच्छे अच्छे सुनाए थे।
0: गाने आपको पसंद आए? गाने लेकिन बहुत स्लो थे, आपको तो ज्यादातर पंजाबी गीत बहुत पसंद है ना?
1: हाँ, पंजाबी गाना ज्यादा अच्छे लगते हैं। गाने
0: आपको तीस तराक खूब तीस गाने ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज
1: मुझे तेज गाने में पसंद है ना, जैसे उससे डांस करना अच्छा लगता है।
0: ठीक है, कभी कभी जीवन में कुछ तेजी लाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और तेज गाने ऐसे लोगों को पसंद भी आते हैं, कुछ लोगों को फास्ट जीवन अच्छा लगता है। आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: सर, मुन्ना माइकल मूवी का गाना सुनेंगे, मेरी शांति भंग करती है।
0: तो ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, और गर्मी के इस मौसम में आपने व्यवस्था कुछ कर रखी होगी पशु पक्षियों के लिए?
1: सर, हम पक्षियों के लिए रोजाना मतलब ब्रिज के छाव में पानी रखते हैं, उनके लिए दाना रखते हैं, और समय समय पर पानी बदल भी देते हैं, कभी पानी गर्म न हो, क्योंकि हम जिस तरह हर ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, उसी तरह हम पक्षियों के लिए भी ठंडे पानी रखते हैं।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल पानी गर्म हो जाता है क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही है, और हमारा ख्याल है कि 12-1 बजे तक पानी गर्म हो जाता है, उस समय बदल देना चाहिए, है ना?
1: हम दिन भर में 3 बार पानी बदलते हैं, सुबह दोपहर में
0: फिर शाम को। आप एक जागरूक श्रोता हैं, इसीलिए हमने आपसे इस विषय पर चर्चा किया। फिलहाल आपकी पसंद का गाना हमने पहुंचा दिया है, और सुनिए अपनी पसंद का गाना। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: यहां थक कर बैठ जाना भी अब नहीं होता। जिंदगी दौड़ नहीं, सफर हुआ करती है। और इस सफर में हमारे साथ कौन आ चुका है देखते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम बिड़ोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुड़ियार बोल रहा हूँ सर। जी
0: जी लोकेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इससे पहले कभी कॉल किया था।
1: सर जी मेरा पहली बार कॉल लगा आपके अयोध्या कार्यक्रम में, तो आज मेरा पहली बार लगा है सबसे फर्स्ट में।
0: क्या बात है, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप लगातार कोशिश तो किए लेकिन कॉल लगी है और हमारे से बात हो रही है पहली बार।
1: जी सर जी
0: जी जी जी सर। तो लोकेंद्र जी करते क्या हैं आप?
1: सर जी मैं कृषक हूँ, तो खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ और पशुपालन भी है, गाय है भैंसे है, तो दूध का भी अपना कार्यक्रम चलता है डेली का।
0: क्या बात है, फिर तो आप ही वो खुशनसीब हैं जो शुद्ध देसी घी और दूध का सेवन भी करते होंगे।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। और सर जी आप भी कभी आइए तो आपको भी बढ़िया घी खिलाएंगे, दूध खिलाएंगे।
0: बिल्कुल, आपने अगर इतनी ख्वाहिश अगर रखी है तो बेशक हम कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपके इस बड़े दिल की हम इज्जत करते हैं। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप इस समय वहाँ गर्मी पड़ रही होगी, काफी पड़ रही होगी, है ना?
1: अब बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एमपी में बहुत मान गर्मी पड़ रही है, अभी 45 और 43 डिग्री तापमान है, तो गर्मी भी पड़ रही है, लू भी चल रही है, कभी कभी पानी भी बरस जाता है बीच बीच में, तो 4-5 दिन पहले पानी भी बरस जाता।
0: तो ऐसे में पशुओं की देखभाल कैसे कर पा रहे हैं आप?
1: ऐसे में सर जी उनका जैसे कि लपट में और ना जाने के का, और उसके जैसे आवारा पशुओं आवारा जैसे ढील देते हैं तो उनको नहीं ढीलना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए
0: जी जी।
1: और उनका देखभाल करना, सुबह से हम पानी पिलाना और दो टाइम उनको नहलाना
0: जी, जी।
1: उसके बाद हरा चारा होता है ना वो
0: जी जी,
1: तो उसके बाद उनको काट के उनको खिलाना,
0: दाना
1: पानी खिलाना और उसके बाद खर वगैरह है
0: जी,
1: तो इसलिए उनकी देखभाल करता रहता हूँ सर जी। और उनको उनको माने ढीलता नहीं, बाहर जैसे ढीलते तो बीमार हो जाएंगे, लपट चलती है और धूप भी तेज निकल रही है।
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए
1: करते हैं और घर पे रहते हैं।
0: हाँ, पशु वास्तव में हमारे लिए जितना उपयोगी है उतनी उनकी देखभाल भी बहुत जरूरी होता है, और वो स्वयं से तो कुछ कर नहीं सकते, तो करना तो हम ही लोगों को होता है। और जब हम उनसे कुछ फायदे उठा रहे हैं, कुछ लाभ ले रहे हैं, तो उनकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज बनता है।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि अपने लिए दूध दे रहे हैं, वे घी निकल रहा है, तो अपन को बिल्कुल उनकी जैसे अपनी अपनी व्यवस्था करता है इंसान अपने
0: जी।
1: लिए, तो उनको लिए भी सर जी, उनके लिए कूलर भी लगा है, बढ़िया किट लगी है, तो उनके लिए हवा का भी अच्छा इंतजाम है और बढ़िया उसमें ठंडक में उनको बांधते हैं, तो इसलिए उनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता हूँ सर।
0: बहुत जरूरी है ये सब। फिलहाल लोकेंद्र जी अच्छा लगा आपसे बातें करके, आप अच्छा बोल लेते हैं। और गाना आज कौन सुनना चाहेंगे?
1: सर जी फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, उसका एक गीत है, चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी जाए, मिलके ना होंगे जुदा, ऐसा गीत है।
0: बिल्कुल, आप जुदा मत होइएगा क्योंकि हम भी चाहते हैं, तूफान तो लगातार आ ही रहे हैं इस समय, लेकिन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और
1: सर जी कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल कर दीजिए। हाँ हाँ कर दीजिए।
1: हाँ तो सर जी पहले तो आपको डिटेल मैं करूंगा सर जी, उसके बाद हमारे तो जयपाल यादव जी हैं और सतीश जी हैं और पूनम जी हैं, उदिता जी हैं, अंजलि जाटव जी हैं और सभी दो जो सुनने वाले कार्यक्रम सुन रहे हैं अयोध्या केंद्र, और ब्रजकिशोर कुशवाहा जी हैं गोंदन वाले
0: जी। शुक्रिया।

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
1: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
0: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: सुनैन आई हॉस्पिटल नियावा फैजाबाद अयोध्या द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आई केयर फॉर यू सुनना ना भूलें कल रविवार रात 8:15 से।
2: अच्छा दोस्तों, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो 73-76-80-40-90 ये नंबर डायल कर सकते हैं और जैसे ही आपकी कॉल आएगी हम आपसे बातें करेंगे, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो सतीश सर
2: जी, नमस्कार सतीश जी।
3: नमस्कार सर।
2: हाँ, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, साथ ही नियमित कॉलर भी हैं।
3: जी जी।
2: कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
3: कार्यक्रम सर हमको बहुत अच्छा लगते हैं
2: और फोन इन प्रोग्राम में
3: सबसे ज्यादा प्रोग्राम को जो फेसबुक पर रहता है उसको हमको बहुत अच्छा लगता है। वो
2: लोकगीत
3: नहीं, फेसबुक पर आधारित जो रहता है।
2: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, दोपहर में आता है कुछ तुमने कहा।
3: जी,
2: जी अच्छी बात है, आपको पसंद आया वो प्रोग्राम। इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम और अच्छा लगता है इससे ज्यादा भी?
3: हमको ज्यादा समय मिल नहीं पता सर, जो चलो वही प्रोग्राम सुन पाते हैं। हमारा काम तो बहुत बिजी रहता है ना हम लोग।
2: लेकिन आप
3: चलो प्रोग्राम सुन पाते हैं हम लोग।
2: आप लगातार प्रोग्राम सुनते रहते हैं इसलिए दिन भर आप इतना रेडियो से भरे होते हैं कि रात होती है तो कोशिश करते हैं कि आप कॉल लगा देते हैं।
3: जी सर।
2: और कॉल आपकी लग जाती है तो आपकी बात भी हो जाती है। तो फिलहाल आज गाना कौन सा सुनेंगे?
3: लता दुखलिंग का सुनना चाहते सर।
2: जी जी, लता मंगेशकर की। हाँ हाँ हाँ जी जी, तो ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। गाना भी बड़ा अच्छा है और लगता है कि आप पुराने फिल्मों को पसंद करते हैं, गाने भी पुराने अच्छे लगते हैं आपको।
3: पुराने फिल्म बहुत अच्छे होते हैं।
2: पुराने गानों में जो सुर जो संगीत है वास्तव में बहुत प्रभावित करता है। तो सतीश जी, गाना आपकी पसंद का हमने पहुंचा दिया आप तक और सभी सुनने वाले भी सुने इस गाने को।

0: चलिए दोस्तों, लगभग 14 मिनट अब शेष बचे हैं और हमारे एक श्रोता लाइन पर इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, अपना नाम बता दीजिए। हेलो
1: हेलो,
0: बोलते रहिए बोलते रहिए, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। आवाज़ आपकी मिल रही है और एयर पर भी जा रही है, लोग सुन रहे हैं।
1: सबने बताया था सर, मैं नेता बोल रही हूँ कुचेरा बाजार रजतगढ़ से।
0: कुचेरा बाजार जी, तो आपकी कॉल लगती रहती है या नहीं लग पाती?
1: नहीं सर, कहाँ लगती है,
0: बड़ी मुश्किल से लगती है।
1: बहुत कोशिश करते हैं लगती है।
0: अच्छा, अब तक कितनी बार आपकी बात हुई है?
1: सर एक बार।
0: एक बार, चलिए आप कोशिश करिएगा तो फिर लगेगा। कुछ लोगों की कॉल तो रोज
1: बहुत कोशिश करती हूँ
0: जी।
1: 30 मिनट से लगा रही हूँ, अभी फोन लगा।
0: कुछ लोगों की कॉल रोज लग जाती है और आज भी लगी थी, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ा अवसर दे दूसरे लोगों को, और उसी के बाद आपकी कॉल आ गई तो हमने आपसे बात किया। आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: तो मान लीजिए दिल का क्या करते हैं।

आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में तो ये गाना हमने आप तक पहुंचा दिया। अनीता जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: सुनत हो सखी सुनत हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
5: हर दिन की थकान मन का बोझ और अंदर की बेचैनी कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
4: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आपसे मिलाता है।
5: जी हाँ और वो है योग।
4: जब आपका मन शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
5: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
4: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए तन को वज्रासन की

0: मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारे पास शेष 7 मिनट बचे हैं और हम आपको बताते चले कि एक श्रोता त्रिवेणी जी सादतगंज से फ़ोन किए थे और दुर्भाग्य से उनकी कॉल कट गई। एक श्रोता लाइन पर है, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, बोलते रहिए।
3: जी सर नमस्ते।
2: हाँ हाँ नमस्ते, बोल रहे हैं, बोलिए।
3: गाना सुनवा दीजिए, हम आपके हैं कौन का।
2: बिल्कुल सुनवा देंगे, ऐसी क्या नाराजगी, गाना बताइए। हेलो,
3: गुड़िया खिलौने।
2: इसमें इस तरह की कोई लाइन तो नहीं है, लेकिन गाना हम आपको इसमें, चलिए हम सुना देते हैं एक गीत। और अपना नाम तो आपने बताया नहीं।
3: रानी।
2: कहाँ से फोन किया आपने।
3: जी यही अपने गोदाम के सामने से बोल रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत शौक से आते हैं बात करने के लिए, लेकिन सो गया है अभी।
2: हाँ तो रात तो हो गई। जी
3: हम जॉब करते हैं संगम नमकीन में, कभी आइए तो मुलाकात होगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, FCI में।
3: हाँ, यही बगल में जो संगम नमकीन है इसी में जॉब करते हैं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कभी मुलाकात होगी। फिलहाल आपकी पसंद का गाना हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए, और फिर फोन करिएगा क्योंकि आज समय लगभग खत्म होने को है, है ना।
3: ठीक है सर
2: जी, धन्यवाद।
3: करेंगे तो बच्चे से बात जरूर कराएंगे।
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर बात कराइएगा।
3: बहुत शौकी आता है, बहुत फोन लगाने के लिए वो लगाता है, लेकिन बात नहीं हो पाती, लगता ही नहीं है।
2: जी जी, बच्चों की इच्छा होती है। और देखिए गाना,
3: इतनी खुशी है जिंदगी में, हमने बचपन से बाजा सुन रहे हैं रेडियो के समय से, लेकिन आज पहली बार कॉल लगी है।
2: खुशी तो हम लोगों को भी होती है। जी जी जी, चलिए सुनिए अपनी पसंद का गाना, धन्यवाद।
3: नमस्ते।
2: दोस्तों हमारे पास शेष 5 मिनट बल्कि 4 मिनट बच रहे हैं, और अगर कोई श्रोता लाइन पर आया तो उसे हम बातें भी कर लेंगे।

0: दोस्तों समय इजाजत तो नहीं दे रहा, लेकिन सोचते हैं कि कॉल ले ही लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम?
1: ये सर, मैं हमरान बेग बोल रहा हूँ, अम्बेडकर नगर अलनपुर।
0: जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और नियमित कॉल भी आप करते रहते हैं, है ना?
1: जी सर, तकरीबन 20 दिन बाद कॉल
0: किया। 20 दिन बाद कॉल किया, लेकिन बिल्कुल आखिरी में आपकी कॉल लगी है, तो दुर्भाग्यवश हम आपका गाना भी नहीं सुनवा सकते, लेकिन बात तो हो ही रही है।
1: जी सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने आपसे बात होगी बस यही काफी है।
0: जी, करते क्या है आप?
1: सर अभी तो घर पे रहते हैं, बस ऐसे खेत वगैरह का काम में और क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं।
0: अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बात है, आप ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, है ना?
1: क्रिकेट खेलते हैं।
0: अच्छा, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। जी, तो इस गर्मी में कहाँ आप खेल पाते होंगे?
1: जी सर, इस गर्मी में भी खेलते हैं, असल में शौक ऐसी चीज होती है ना कि आदमी उसमें खेलता ही रहता है।
0: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शौक है तो फिर
1: देखो, अभी मुंबई प्रीमियर लीग हो रहा है, उसमें भी देखो वुमेन्स भी खेल रहे हैं, मेंस भी खेल रहे हैं।
0: जी जी,
1: कोई दिक्कत
0: बिल्कुल अच्छी बात है। आपने ये शौक वाली बात की, हम इससे इत्तेफाक रखते हैं और हम

0: हाँ जी
1: सब ठीक है सर, आकाशवाणी केंद्र में
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। गर्मी पड़ रही है, सभी लोग बेहाल हैं और जैसे तैसे हम लोग आते हैं, प्रोग्राम करते हैं आप लोगों के लिए, लेकर प्रोग्राम आते हैं और कोशिश रहती है कि आप लोगों को हर तरह से खुश करें।
1: ये तो, सर आपका सारा कार्यक्रम बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, आपके सारे एंकर बहुत अच्छा कार्यक्रम सुनाते हैं।
0: शुक्रिया। और अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है तो फिर फोन करिएगा, धन्यवाद फोन करिएगा। थैंक
1: यू।
0: तो दोस्तों हमारे पास फिलहाल तो समय नहीं है और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत। तकनीकी तौर पे हमें सहयोग किया अरविंद कुमार जी ने और आपका दोस्त गिरजेश निषाद अब चाहता है इजाजत। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, आप सुन रहे थे सजीव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या और हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 10:30 होने को हैं। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। प्रतीक्षा करें।
1: ये विविध भारती है राष्ट्रीय
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
3: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नई युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक